0: 印度的李光国电台。
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

औरों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: 听众朋友们，今天的普通话节目播送到这里，谢谢收听，再会。
1: और उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। महादेवी वर्मा का मानना था कि नारी की स्थिति में सुधार के लिए केवल कानून और नीतियां पर्याप्त नहीं है, इसके लिए समाज की सोच में परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार की भी वकालत की। महादेवी वर्मा ने नारी के अधिकारों के लिए समाज से संघर्ष करने और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने का संदेश दिया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड से अयोध्या कांड भाग 63।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आगाते।

ओडिशा कपाल तरसबत मंगलवारकान पंगिलान तरुडात मंडसाक कमारिन पागीबनी सुल्क कगगलान मैसिन उतामाडान पंबांजिरान चप्पा सबुअर तांकी पंबारात यांग मंग आकीबातकान कमिरिंग्यान यांग बरबहाया कमंत्रियान परतानन मान्यताकान बाबा कपाल तरसबत मंबावा हाम पीर संबिलान रिबु मेट्रिक टन मेन्याक साविडंगान दुआ पुलु तिगा अंगोता आवाग दियातास कपाल कमंत्रियान मंगन फरमासी कमंत्रियान मंग इन्फॉर्मेशन बाबा ईचे जे एस विश्वत यंग सगरा दिकराकान कलोकासी तरसबुत ममुलाई लंका लंका पंगंडालिनी पंगे अंडालियान कर सुरकान दरारुरात सतला दी स्ताबिल खान कपाल टुंडा पलाबुनार प्रदीप डॉल्फिन मंगामिल एम ते सगवाल सम्मिलान उन्तुक दी तारिक मनुजु अरियल लब्बी जांका दी लपास प्रदीप कौंसुला जनरल इंडिया दुबई तला मनेलांगराकान सरंगायान कगियातान पनामानान पोहान दी यूनिवर्सिटा दी सलुड़ दुबई सभागाई बगियान दारी सेवा पखवाड़ा यंग सडंग बरलांगसुंग कौंसुल जनरल इंडिया दी दुबई डॉक्टर ई विष्णु वर्धन रेड्डी बर पार्टिसिपासी डालम कगियातान पनामान दी कैंपस दुबई दारी बरबागई यूनिवर्सिटा तरमासुक बिट्स प्लानी अकेदमिक पंडिटिकान तिंगी मानीपाल यूनिवर्सिटी अमेटी दन यूनिवर्सिटा दुबई पारा कौंसुल डन पंजाबात पंजाबात लाइन कौंसुला जुगा बर पार्टिसिपासी दलम कगियातन तरसबोत बर इंतराक्सी डंगन महाशिश्वा डोसेंट डान मित्रा इंस्टीट्यूशनल हुंतुक मेम्प्रोमासी कान कसाडारान दारी तिंडाकान लिंकुसान इनिशियाटिव इनिशियाटिव पनामान बोहान तरसबोत मंत्रमिन कान समांगा सेवा भाव अताव समांगा पंग अब्डियान दन कमिटमेंट बरसामतराडा कबर लाजुतान लिंकुगान मेम्पुक कम्युनिटास कम्युनिटास यांग लब्बी हिजाऊ डान बर कॉन्ट्रीब्यूसी मनुजु मासा डपान यांग बर कलांजुतान डान फिसी विकसित भारत अताओ इंडिया यांग वाजो मंत्री नगारा हुकुम डान का अडिलान ऊनी इंडिया अर्जुन राम मेघवाल हारिनी मन पैकान पिडातो डालाम कांग्रेस परसरिकातान बांगसा बांगसा का लीमा ब्लास तंतंग पंचगाहान कजातान डान पर अडिलान पिडाना डी अबूधाबी UAR dalam pidato nya menteri meneliti upaya-upaya India menuju keadilan digital langkah-langkah yang lebih kuat untuk memerangi kejahatan siber dan terorisme peningkatan kerjasama internasional dan pemberian keadilan yang tepat waktu menteri Uni India tersebut juga menginformasikan kepada para delegasi yang berpartisipasi mengenai informasi-informasi mengenai reformasi-reformasi yang dilakukan melalui undang-undang pindang baru India dan komitmen negara tersebut untuk memperkuat sistem peradilan pidana sesuai dengan standar-standar global. Di sela-sela acara tersebut, Sri Magwal juga bertemu dengan Menteri Kehakiman UEA Abdullah Sultan bin Awad Al-Nuima. Kedua pihak mendiskusi cara-cara untuk lebih memperkuat kerjasama hukum antara India dan UEA. India melanjutkan penampilan meraih medali yang menegaskan dalam Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan para atlet dan menambahkan beberapa medali ke tali negara tersebut. Dalam atletik, India meraih podium ganda dalam lempar lembing putra. Yashvir Singh menangkan medali perak dengan upaya terbaik pribadinya sejauh 85,72 meter, sementara Rohit Yadav meraih perunggu dengan lemparan sejauh 84,35 meter. Dalam lompat jauh putra, Sir Shankar Murali meraih medali perak dengan upaya terbaik sejauh 8,07 meter. Gulveer Singh juga menambahkan perak lainnya ke tilinya setelah finish sebagai runner-up dalam 1500 meter putra. Beliau sebelumnya telah menangkan perak dalam 10.000 meter putra. Dalam menembak, Isha Singh memenangkan perak dalam nomor pistol 25 meter perorangan menteri. Penembak India berusia 21 tahun tersebut finish kedua dengan skor 38 poin. Parul Chaudhary meraih medali perunggu keduanya dalam pekan olahraga dalam 5000 meter putri setelah sebelumnya finish ketiga dalam 3000 meter helang rintang putri. Vithya Ramraj juga meraih perunggu dalam 400 meter gawang putri mencetak rekor nasional dalam proses prosesnya.
Beliau mencatat waktu terbaik pribadinya yaitu 54.75 detik untuk finish ketiga. India menambahkan perunggu lainnya dalam Kuraj dengan Pinky Balhara finish ketiga dalam kategori di bawah 78 kg putri. Sementara itu, tim kriket putra India melaju ke semifinal tanpa bertanding. Pertandingan perempat final mereka melawan Afghanistan ditinggalkan akibat cuaca buruk di Aichi Nagoya. Saat ini India berada di posisi ke-12 dalam klasemen medali Asian Games dengan total 45 medali terdiri dari 4 emas, 20 perak, dan 21 perunggu. Sari berita penting sekali lagi. India menargetkan ekspor senilai $1 trillion seiring perdagangan India UEA siap berlipat ganda menjadi $200 miliar pada tahun 2032, kata Menteri Uni India Piyush Goyal. India menegaskan kembali komitmen global untuk mengakhiri rasisme dan xenofobia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyerukan tindakan konkret terhadap deklarasi Durban. India memperkuat diplomasi kesehatan dengan pengiriman 3 ton obat anti-TB ke Sri Lanka. Iran menyampaikan protes resmi kepada lembaga pengawasan penerbangan PBB atas sanksi-sanksi penerbangan Amerika Serikat. Dalam Asian Games, India naik ke posisi ke-12 dengan 45 medali terdiri dari 4 emas, 20 perak, dan 21 perunggu. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut, serta warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam dan kesan dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

0: मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गाँव में रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चुन्ना हल्दा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उल दर है। उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक

0: अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि किशोरियों से गैंगरेप पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने UPI भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का MDR पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो इस साल CBSE की तीन जबानों की पॉलिसी से छठी जमात के तलबा को मुस्तस्ना करार देने पर गौर करे। भारतीय बहरिया आज से आइंदा जुमेरात तक नई दिल्ली में दूसरी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगी। दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा के दौरान कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अमरीका ने भारत और 19 दीगर मुल्कों से दरामद की जाने वाली खसूसी दवाओं पर आयद महसूलात को खत्म कर दिया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE को हिदायत दी है कि वो छठी जमात के मौजूदा तलबा को तीन जबानों के निजाम से वही रियायत देने पर गौर करें जो पहले ही सातवीं जमात के तलबा को दी जा चुकी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमालिया बागची और वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज और CBSE की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इस साल छठी जमात के तलबा को भी वही रियायत दी जाए जो सातवीं, आठवीं और नवीं जमात के तलबा को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितम्बर को CBSE से कहा था कि वो छठी जमात के तलबा के लिए तीन जबानें जिसमें दो भारतीय मुकामी जबानें शामिल हैं पढ़ने की अपनी पॉलिसी 2027 से शुरू होने वाले अगले तालीमी साल से नाफिज करने पर गौर करे। CBSE के बयान के मुताबिक इस वक्त सातवीं, आठवीं और नवीं जमात में पढ़ने वाले तलबा को जब वो दसवीं जमात में पहुंचेंगे तो तीसरी जबान का बोर्ड इम्तिहान देने की जरूरत नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत आलिया को बताया कि तकरीबन 99% स्कूलों ने तीसरी जबान की पॉलिसी इख्तियार कर ली है और उन्हें इसके लिए जरूरी सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं, जबकि तकरीबन 1.2% स्कूलों ने अभी तक ये पॉलिसी इख्तियार नहीं की है। ताहम समात के दौरान मरकज ने मौकफ इख्तियार किया कि वो छठी जमात के मौजूदा तलबा को इस पॉलिसी से मुस्तस्ना करने के हक में नहीं है। मरकज का कहना था कि तलबा को मौजूदा तालीमी साल ही से जबान के नए निजाम पर अमल शुरू करना चाहिए। भारतीय बहरिया आज से जुमेरात तक नई दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के दूसरे एडिशन की मेजबानी करेगी। तीन रोजा ये कॉन्फ्रेंस मरकजी मुकाम से बाहर तैनात ऑपरेशनल और एरिया कमांडरों समेत सीनियर बहरी क्यादत को यकजा होने का मौका फराहम करेगी। इस दौरान फौजी स्ट्रेटजिक सतह पर ऑपरेशनल तैयारियों का जामे जायजा लिया जाएगा और इदारा जाती मैकेनिज्म के जरिए सीनियर हुकूमती अमले के साथ तबादले ख्याल किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस मगरबी एशिया में जारी तनाजात के दौरान तवानाई के तहफ्फुज़ समेत भारत के बहरी मफादात की हिफाजत में भारतीय बहरिया के रोल को भी नुमाया करेगी। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह कौमी बहरी नजरियात और भारतीय बहरिया से तवक्कुआत के मौजू पर अपने ख्यालात पेश करेंगे। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर जनाब भूपेंद्र यादव ने कौमी राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी में कमी के एक्शन प्लान का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। कल मुनक़िद हुई इस मीटिंग में पहले से किए गए इकदाम, जमीनी सतह पर हासिल की गई पेशरफ्त और मौसम सरमा से कबल और इसके दौरान किए जाने वाले इजाफी इकदाम का जायजा लिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एक्शन प्लान के तहत बेदारी और कानून के निफाज के जरिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट शनाख्त से लैस तमाम पेट्रोल पंपों पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं का उसूल नाफिज किया जाएगा। यकुम नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाली इन्हदामी सरगर्मियों और

0: हिफाजत के मद्देनजर चारधाम यात्रा 26 सितंबर के दोपहर से 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। इस दौरान चिरबासा के करीब केदारनाथ धाम ट्रैकिंग रूट पर मरम्मत और दीगर तामीरी काम जारी है। चिरबासा के करीब शदीद बारिश के बाद मलबे और चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से गोरीकुंड के ऊपर बने तकरीबन 2.5 किलोमीटर के इस रास्ते को नुकसान पहुंचा था। उड़ीसा में हीराकुंड डैम के बालाई इलाकों में जारी शदीद बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी में इजाफे से महानदी के इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। हीराकुंड डैम के 28 दरवाजे खुले हैं जिनसे तकरीबन 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। कटक के नजदीक मुंडली में छोड़े जा रहे पानी की मकदार बढ़कर तकरीबन 8 लाख क्यूसिक हो गई है, जिस पर करीबी नजर रखी जा रही है। फिक्की फ्रेम्स 2026 आज से मुंबई में शुरू होगा। इस साल के फिक्की फ्रेम्स का उन्वान है भारत में मीडिया का दौर, लामहदूद कंटेंट के दौर में अखदार की तश्कील। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स 2026 में इफ्तिताही खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के एम्बेसडर और अदाकार आयुष्मान खुराना भी तकरीब से खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के इफ्तिताही इजलास के दौरान फिक्की के साबिक सदर और जियो स्टार के नायब चेयरमैन उदय शंकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट इनाम दिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान भारत की स्क्रीन मईशत, सिनेमा, डिजिटल क्रिएटर्स, स्पोर्ट्स वीविंग, मसनूई जहानत और कॉपीराइट के अलावा दीगर मामलों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: अमरीका, भारत और दीगर 19 मुल्क ममालिक से गैर मामूली तिब्बी हालात के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ स्पेशलिटी दवाओं और उनसे मुतालिक अज्जा की दरामद पर किसी तरह का महसूल आयद नहीं करेगा। अमरीका के कॉमर्स के महकमे ने विफाकी रजिस्टर में इन ममालिक की फहरिस्त शाई की है, क्योंकि वो कुछ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स दरामदात और उससे मुतालिक अज्जा पर 29 सितंबर से 100% महसूल आयद करने की तैयारी कर रहा है। सिफर महसूल वाली मसनूआत में गैर मामूली बीमारियों के इलाज की सभी दवाएं, बांझपन के इलाज, खुलियात की थेरेपी, जेन थेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स और जानवरों की दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं के अज्जा पर भी कोई महसूल आयद नहीं होगा। भारत के अलावा सिफर महसूल के जुमरे में यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, बरतानिया और वियतनाम शामिल हैं। ये इस्तिस्ना ट्रंप के अप्रैल ऐलान पर अमलावरी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने तजारती तौसी के कानून की दफा 232 के तहत फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स अज्जा की दरामदात को तरतीब देने की बात कही थी। भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम मैदान में उतरे बगैर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईसी नागोया में खराब मौसम की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ इसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला मंसूख कर दिया गया। इसके साथ ही जापान के आईसी नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत का तमगे जीतने का शानदार सिलसिला जारी है। खिलाड़ियों और निशानेबाजों ने मुल्क के तमगों की तादाद में कई तमगों का इजाफा किया है। एथलेटिक्स में भारत ने मर्दों के जेवलिन थ्रो में 2 तमगे जीते। यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर में बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। मर्दों के लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने 8.70 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया कली। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने यूपीआई लेन देन पर चार्जेस से मुतालिक खबर को नुमाया किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर नाफिज करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रोजनामा प्रताप ने आइंदा मौसम सरमा के पेश नजर फजाई आलूदगी से निपटने के लिए दिल्ली हुकूमत की तैयारी के हवाले से शह सुर्खी लगाई है। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए जंगी सतह पर तैयारी जारी। वर्क फ्रॉम होम, तामीरी व इन्हदामी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी समेत कई अहम फैसले। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर आजम ने मोदी ने लता मंगेशकर को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनकी आवाज नस्लों तक गूंजती रहेगी। अखबार की एक दिगर सुर्खी है, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन कतर के दौरे पर पीर की सुबह दोहा पहुंची।
0: खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो इस साल सीबीएसई की 3 जबानों की पॉलिसी से 6ठी जमात के तलबा को मुस्तस्ना करार देने पर गौर करे। भारतीय बहरिया आज से आइंदा जुमेरात तक नई दिल्ली में दूसरी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगी। دلی حکومت نے موسم سرما

के दौरान कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अमरीका ने भारत और 19 दीगर मुल्कों से दरामद की जाने वाली खसूसी दवाओं पर आयद महसूलात को खत्म कर दिया है और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भव्या शाराश्वत से ध्रुपद गायन राग हिंडोल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे भव्या सारस्वत से ध्रुपद गायन राग हिंडोल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है विज्ञान पत्रिका।

नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज पर्यावरण केवल पेड़ पौधों या जंगलों का विषय नहीं है। वायु प्रदूषण, जल संकट, प्लास्टिक कचरा, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, ग्लेशियरों का पिघलना और जैव विविधता का नुकसान सीधे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आज पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुका है। बढ़ता प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे जीवन और भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में केवल सरकार या पर्यावरण संगठनों की जिम्मेदारी पर्याप्त नहीं है, आम नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। ऐसे समय में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और उन्हें समाधान का हिस्सा बनाने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों को जागरूक करने और उन्हें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया समाज का आईना होने के साथ साथ बदलाव का प्रभावशाली माध्यम भी है। मीडिया केवल समाचार देने का माध्यम नहीं, टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, वेबसाइट, सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मीडिया लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के द्वारा पर्यावरण से जुड़े संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। जब मीडिया लोगों को पानी बचाने, पेड़ लगाने, बिजली की बचत करने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने और कचरे का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो केवल जानकारी नहीं देता बल्कि व्यवहार में बदलाव की नींव भी रखता है। हालांकि केवल संदेश देना ही पर्याप्त नहीं है। किसी भी जागरूकता अभियान की सफलता तब होती है जब संदेश वास्तविक कार्य में बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि मीडिया केवल ये बताए कि पानी बचाइए तो ये एक सामान्य संदेश हो सकता है, लेकिन यदि वो लोगों को वर्षा जल संचयन, पानी के रिसाव को रोकने और दैनिक जीवन में पानी की बर्बादी कम करने के आसान तरीके भी बताए तो लोगों के लिए उस संदेश को अपने जीवन में लागू करना आसान हो जाता है। मीडिया की एक और महत्वपूर्ण शक्ति कहानियां और वास्तविक उदाहरण है। जब किसी किसान, विद्यार्थी, संस्था या समुदाय की पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सफलता की कहानी सामने आती है तो दूसरे लोग भी उसे प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसी कहानियां ये विश्वास पैदा करती हैं कि छोटे छोटे प्रयास भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार मीडिया समस्या बताने के साथ साथ समाधान का रास्ता भी दिखा सकता है। रेडियो इस क्षेत्र में विशेष भूमिका निभा सकता है। रेडियो की पहुँच व्यापक है और इसे लोग अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ सुन भी सकते हैं। रेडियो कार्यक्रमों में विशेषज्ञों की बातचीत, स्थानीय लोगों की कहानियाँ, प्रश्नोत्तरी और श्रोताओं की भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे पर्यावरण संरक्षण केवल एक गंभीर विषय न रहकर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा बन सकता है। आज सोशल मीडिया ने पर्यावरण जागरूकता को एक नया मंच दिया है। एक छोटा वीडियो, पोस्ट या कुछ अभियान कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन सोशल मीडिया की वास्तविक सफलता केवल किसी संदेश के वायरल होने में नहीं बल्कि लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में है। किसी पोस्ट को लाइक या शेयर करने के साथ साथ यदि लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, तभी डिजिटल जागरूकता वास्तविक परिवर्तन में बदल सकती है। युवाओं की भागीदारी भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण है। युवा सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, वीडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके पर्यावरण से जुड़े संदेशों को रचनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज स्तर पर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक कम करने और ऊर्जा बचाने जैसी छोटी छोटी पहलें भी समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती हैं। मीडिया की जिम्मेदारी केवल पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर करना नहीं बल्कि सही और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना भी है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यों और व्यावहारिक समाधानों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को केवल किसी विशेष दिवस तक सीमित न रखकर नियमित रूप से चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ

पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को मीडिया ने बड़े स्तर पर जनता तक पहुंचाया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के विषय को देखें। यूरोप और अमेरिका में समाचार चैनलों, अखबारों और डिजिटल मीडिया ने हीट वेव, जंगलों की आग, बाढ़ और समुद्र के बढ़ते जल स्तर जैसी घटनाओं को लगातार रिपोर्ट किया। इससे आम लोगों के सामने ये सवाल आया कि इन घटनाओं का संबंध बदलती जलवायु से किस प्रकार है। इसी तरह कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की पर्यावरण संबंधी डॉक्यूमेंट्री और रिपोर्टों ने जंगलों, समुद्री जीवन, वन्य जीवों और जलवायु परिवर्तन के विषयों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया है। उदाहरण के लिए वन्य जीवों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में जब दर्शक किसी विलुप्ति के खतरे में पड़े जानवर या नष्ट होते जंगलों को देखते हैं, तो पर्यावरण का मुद्दा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, वो एक भावनात्मक और वास्तविक अनुभव बन जाता है। सोशल मीडिया ने इस प्रभाव को और बढ़ाया है। किसी जंगल की आग, समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण या किसी घायल वन्य जीव का वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इससे लोगों में चर्चा, जागरूकता और कई बार जन अभियान भी शुरू होते हैं। विदेशों में पर्यावरण से जुड़े जन आंदोलनों को भी मीडिया ने व्यापक मंच दिया है। उदाहरण के लिए ग्रेटा थनबर्ग और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन को लिया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर शुरू हुआ ये आंदोलन सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों के जरिए बहुत तेजी से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा। यहाँ मीडिया ने केवल घटना की रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि युवाओं की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी प्रदान किया। हालांकि मीडिया का काम केवल किसी आंदोलन का प्रचार करना नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो वैज्ञानिक तथ्यों, अलग अलग दृष्टिकोणों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर लोगों को जानकारी दे। अब अगर हम अपने देश भारत की बात करें, तो यहाँ भी मीडिया ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलों को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन इसका एक अच्छा उदाहरण है। सरकार द्वारा स्वच्छता, खुले में शौच की समस्या और कचरा प्रबंधन को लेकर अभियान चलाए गए। टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से इन अभियानों के संदेशों को गांवों और शहरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा मन की बात जैसे रेडियो कार्यक्रमों में भी स्वच्छता, जल संरक्षण, स्थानीय पर्यावरण और जन भागीदारी से जुड़े उदाहरणों को सामने लाया गया। इससे ये संदेश पहुंचा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिक भी इसमें योगदान दे सकते हैं। एक अन्य उदाहरण नमामि गंगे कार्यक्रम का है। गंगा नदी की सफाई और संरक्षण को लेकर सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। मीडिया ने नदी में प्रदूषण, सीवेज, औद्योगिक कचरे और गंगा की स्थिति से संबंधित रिपोर्टों के माध्यम से इस मुद्दे को लगातार चर्चा में बनाए रखा। इससे आम लोगों में ये समझ विकसित करने में मदद मिली कि नदी केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारे जल संसाधन, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह अनेक सरकारी योजनाओं को मीडिया के माध्यम से जमीनी स्तर पर उतारने में मदद मिली है। भारत में अनेक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओस भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं। इनके कार्यों को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के लिए WWF इंडिया वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कार्य करता है। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे संगठनों के अभियान और जागरूकता कार्यक्रम बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE पर्यावरण, प्रदूषण, जल और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जब इन रिपोर्टों को समाचार माध्यमों में जगह मिलती है, तो पर्यावरण से जुड़े विषय केवल विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आम नागरिकों और नीति निर्माताओं के बीच भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। आज के समय में पर्यावरण जागरूकता का सबसे तेज माध्यम सोशल मीडिया भी बन गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग प्लास्टिक कम करने, पेड़ लगाने, पानी बचाने और कचरे को अलग अलग करने जैसे अभियानों को साझा करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी शहर में लोग मिलकर किसी झील, बावड़ी, कुएं आदि जल स्रोतों की सफाई करते हैं और उसकी तस्वीरें तथा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, तो दूसरे लोग भी उसे प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में ऐसा अभियान शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई, नदी में प्रदूषण या अवैध कचरा फेंकने जैसी समस्या का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन का ध्यान भी उस समस्या की ओर आकर्षित हो सकता है। इस प्रकार सोशल मीडिया
एक तरफ जागरूकता का माध्यम है तो दूसरी तरफ नागरिकों को अपनी स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं की आवाज उठाने का मंच भी देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, मीडिया का प्रभाव जितना बड़ा है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। पर्यावरण से जुड़ी खबरों में केवल सनसनी फैलाना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी शहर में

0: आम नागरिकों के बीच तथा पर्यावरणीय समस्याओं और उनके समाधानों के बीच। एक अच्छी पर्यावरणीय खबर केवल हमें समस्या के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम उस समस्या के समाधान में क्या योगदान दे सकते हैं। आज आवश्यकता ऐसे मीडिया की है जो पर्यावरणीय समस्याओं को सही तथ्यों के साथ सामने लाए, सफल प्रयासों को लोगों तक पहुंचाए, वैज्ञानिक जानकारी को सरल भाषा में समझाए और नागरिकों को जिम्मेदार भागीदारी के लिए जागरूक करे। क्योंकि जब सही जानकारी करोड़ों लोगों तक पहुंचती है तो जागरूकता पैदा होती है, और जब जागरूकता के साथ जन भागीदारी जुड़ती है तभी पर्यावरण संरक्षण एक वास्तविक जन अभियान बन सकता है। अंततः ग्रीन संदेश तभी सार्थक है जब वो ग्रीन कार्य में बदल जाए। मीडिया के पास लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करने की शक्ति है। यदि इस शक्ति का उपयोग सही जानकारी, प्रेरक कहानियों और व्यवहारिक समाधानों के साथ किया जाए तो मीडिया पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत सामाजिक आंदोलन को बढ़ावा दे सकता है। हमें केवल ये कहने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि धरती बचाइए, हमें ये भी समझाना होगा कि धरती को बचाने के लिए हम आज क्या क्या कर सकते हैं। एक छोटा पौधा लगाना, पानी बचाना, बिजली की अनावश्यक खपत रोकना या प्लास्टिक का उपयोग कम करना, हर कदम महत्वपूर्ण है। क्योंकि बदलाव केवल संदेश से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब संदेश हमारी आदत और हमारी कार्रवाई बन जाता है। आलेख था विज्ञान लेखक डॉक्टर नवनीत कुमार गुप्ता का।
1: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
2: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डेल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमरीका

0: के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा तकनीक स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों मछुआरों महिला उद्यमियों स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Neeru Dhanda has made history by becoming the first Indian shooter to win gold medal in the women's trap individual event at the Asian Games 2026. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Bangal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. The government has said the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 1,46,000 kilometres in March this year from over 91,000 kilometres in 2014. This rapid development has strengthened connectivity, improved access to markets, and supported faster movement of people and goods. The greening of India's national highway network is guided by the Green Highways Plantation, Transplantation, Beautification and Maintenance Policy 2015. Five new sites and serial and transnational proposals have been included in India's UNESCO tentative list, increasing India's count to 78. The newly added sites include the Buddhist murals of Bagh cave paintings, group of temples of the Chambal Valley, the Gupta era Udaygiri caves, the tribal legacy of Ginnorgarh, and the sites of Satyagraha. In a social media post, Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said these additions reflect the extraordinary diversity of India's heritage. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to the US from today till the 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. Mr. Goyal will also hold bilateral meetings with his counterparts on the sidelines of the G20 meeting. Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has hailed the Paradeep Port team's efforts for its swift joint rescue and execution following a major maritime incident involving a Belize-flagged chemical tanker MT Seagull 9 near Odisha's Paradeep coast. In a social media post, Mr. Sonowal said India's ports are committed to ensuring absolute maritime safety and environmental protection at all times. The Defence Ministry has informed that the vessel was carrying nearly 9,000 metric tons of palm oil with 23 crew members on board. The US will not charge any tariff on certain specialty drugs and associated ingredients used for treatment of rare medical conditions imported from India and 19 other countries. The US Commerce Department published the list of countries in the Federal Register as it prepares to impose a 100% tariff on certain patented pharmaceutical imports and their associated ingredients from September the 29th. World Heart Day is being observed today to raise public awareness about cardiovascular diseases, their prevention and their global impact. In a social media post, Union Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda has said the day reminds people to recognize warning signs, adopt healthy lifestyle practices, manage risk factors and seek timely care. He informed that the theme this year is Don't Miss a Beat. The minister also renewed his commitment to protecting heart health and preventing cardiovascular diseases. In France, over 160 people were arrested and dozens were injured after high school student protests turned violent yesterday. Teenagers across the country have been blocking their schools since last week to protest overcrowded classrooms, heavy workloads, poor learning materials and a shortage of teachers. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% down in the forenoon session today. The Sensex dropped 257 points to 72,514, while the Nifty lost 64 points to 22,716 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

Ascendente. कुछ रिश्ते घर की चौखट पर मिलते हैं, कुछ रिश्ते बातों बातों में दिल तक उतर जाते हैं। कभी किसी हंसी से घर में उजाला हो जाता है, तो कभी कोई छोटी सी बात देर तक सोचने पर मजबूर करती है। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच कुछ पल अपने लिए, अपनों के लिए और उन बातों के लिए निकालने पड़ते हैं जो मन को थोड़ा थाम लें, थोड़ा समझाएं और कभी चुपचाप मुस्कुरा दें। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अपना और हमारा प्यारा प्रोग्राम घर आंगन, और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए आज फिर इसी अपनापन लिए सजाते हैं अपने और आपके बीच का यह छोटा सा आंगन, जहां बातें होंगी जिंदगी की, रिश्तों की, समाज की और उन एहसासों की जो हम सबको कहीं ना कहीं छू जाते हैं, जोड़ जाते हैं।

फिल्म जवानी दीवानी, आवाज किशोर कुमार के साथ आशा भोसले। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम की, जो हमने की थी इस प्यारे से गीत के साथ। दोस्तों, आज है 29 सितंबर और आज एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। जी हाँ, आज है विश्व हृदय दिवस। हर साल ना 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। मकसद है लोगों को हृदय और हृदय से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना। विश्व हृदय महासंघ के अनुसार 2026 की मुहिम का जो संदेश है वो है डोंट मिस अ बीट। जी हाँ, यानी दिल की धड़कन और उससे जुड़े संकेतों को नजरअंदाज ना करें। हृदय रोग कई बार बिना किसी साफ चेतावनी के भी सामने आ सकते हैं दोस्तों, और ना जो उच्च रक्तचाप है वो भी एक ऐसा ही जोखिम है जिसकी शुरुआती लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते। इसलिए ना नियमित जांच, संतुलित खान पान, रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधि और ना धूम्रपान से दूरी, ये सारी चीजें हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ अपनी आदतें बदलने की नहीं है। सीने में दर्द होना, सांस फूलना, अचानक बहुत कमजोरी या असामान्य थकान जैसे अगर कोई संकेत आपको मिले ना, तो उसे कभी भी हल्के में नहीं लें। खासकर महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण हमेशा एक जैसे नहीं होते, तो ऐसे में आपको बहुत ज़रूरत है अपने बारे में पूरी तरह से सारी जानकारी रखने की, मेडिकली अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त रखने की और बार बार अपनी जांच कराते रहने की। तो इस विश्व हृदय दिवस पर अपने दिल की सुनिए। जी हाँ, थोड़ा चलिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, अपनी जांच कराइए और किसी भी चेतावनी को, मतलब अगर आपका शरीर किसी भी तरह की सामान्य तरीके की बातों से अलग हटके कुछ और कर रहा है, तो उन चेतावनियों को, उन संकेतों को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि दिल की सेहत का ख्याल रखना किसी एक दिन का काम नहीं, रोज की छोटी छोटी आदतों से जुड़ा ये एक फैसला होता है। क्योंकि दिल की धड़कन सिर्फ जिंदगी की आवाज नहीं, ये हमें याद दिलाती है कि अपनी सेहत को भी हमें थोड़ा रक्त देना बहुत जरूरी है।

फिल्म थी रूप तेरा मस्ताना, आवाज किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की। आपकी दिल की बातें भी हम जान पाते हैं किसके जरिए? जी हाँ, आपकी ईमेल्स के जरिए। तो आप हमें आपकी ईमेल, जिसमें किसी भी तरह की बात हो सकती है, तो वो आप हमें कहाँ भेजते हैं? जी हाँ, आप हमें भेजते हैं fmgoldga@gmail.com। लेकिन हम आगे बढ़ें उसके पहले एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगी। अच्छा दोस्तों, आज हम विश्व हृदय दिवस मना रहे हैं, तो आज ही के दिन हम अपने दिल की इतनी ज्यादा क्यों सुनेंगे? हर दिन हमें अपने सेहत के बारे में भी तो सुनना चाहिए ना। तो जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे थे कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप लोग भी अपनी तंदुरुस्ती के लिए क्या करते हैं? आप पैदल चलते हैं, खान पान में सावधानी बरतते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की कसरत करते हैं? क्या करते हैं आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए? चलिए आज हम इस बारे में आपसे बात करते हैं। तो आप जानते हैं आपको हमसे कहाँ जुड़ना है, fmgoldga@gmail.com। अच्छा दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी सहेली हो जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हो, जिसे आप अपने

हो या किसी काम के लिए नए विचार चाहिए हो, एआई आपका साथ दे सकती है और देती भी है ना। और इसकी खासियत यह है कि आपको ना इसे झिझकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप बिंदास कुछ भी बात आप इनसे कर सकते हैं। एक ही सवाल बार बार पूछना हो या किसी बात को और आसान तरीके से समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। यही बात सुनकर उसी हिसाब से जो हम आपकी एआई है वो उसी हिसाब से आपको जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन एक अच्छी सहेली की तरह इसका साथ भी समझदारी से लेना जरूरी है। जी हाँ, अब देखिए बहुत बार ये होता है कि जो हमारी सहेली होगी या हमारा दोस्त होगा वो बहुत बार ना हमारी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं और वो हमारे मूड के हिसाब से भी बहुत बार हमारे साथ चलने की कोशिश करते हैं। और ये बात बहुत बार एआई के साथ भी आपने देखी होगी, आप उन्हें जो भी बोलते हैं जो भी बात करते हैं वो घूम फिर कर आपकी बातों में ही आपके साथ उस बात को समर्थन करते हैं या आपकी बातों को मानते हैं और उसी हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को बदल देते हैं। लेकिन आपको समझदारी दिखानी जरूरी है। एआई से मिली हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं होता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जानकारी की जो पुष्टि है ना वो विश्वसनीय स्रोतों से आप जरूर करें और अपनी निजी या बेहद संवेदनशील जानकारी साझा करने से हमेशा बचें। तो एआई को आप अपनी जिंदगी का फैसला करने वाली नहीं बल्कि काम आसान करने वाली एक डिजिटल सहेली बनाइए। आखिर अच्छी संगत तो वही है ना जो हमारा हाथ थामे, लेकिन कदम हमारे अपने साथ, हमारे कदम हमारे हिसाब से अपने साथ रहें और हम उसी हिसाब से चलें, है ना। देखिए बहुत बार ये भी होता है कि सहेली को वो बातें भी अच्छी लगती हैं जो हमारे लिए बुरी हो सकती हैं, या वो बुरी बात को भी बहुत बार छुपा जाती है। लेकिन नहीं, एक अच्छा दोस्त वही है जो आपको सच्चाई बताए और आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए।

फिल्म आए दिन बहार के। इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। देखिए हम आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दें हमारे सवाल के जवाब में हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हैं हमारे साथ नवीन भाटिया जी, ये मोतीनगर से लिखते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर ये हमारे साथ हैं महेश अग्रवाल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखते हैं। सोनाली जी नमस्कार, हमारी सेहत का राज है एफएम गोल्ड पर गाने सुनना और गाने सुनकर अपना काम करते रहना। एक्टिविटी ज़्यादा करता हूँ, आराम कम करता हूँ। अभी आपने एआई के विषय में बताया है तो अच्छा है तो अच्छा, लेकिन हमने कभी अपना दोस्त नहीं बनाया। अच्छा, और हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं महेश जी, आपने इसे अभी तक अपना दोस्त नहीं बनाया, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कभी ज़रूरत लगे तो आप पता कर सकते हैं कि एआई आपका किस तरह से मददगार और अच्छा दोस्त बन सकता है। फिर हमारे साथ हैं उमेश कुमार खयाला से लिखते हैं, नमस्ते मैडम जी, मैं तो पैदल चलता हूँ और खाने पीने का ध्यान रखता हूँ। प्रोग्राम और गाने एआईआर साथ साथ और साथ साथ जानकारी भी हमारे प्रोग्राम में इनको मिलती है तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लग रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ऐसे ही हमारे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन और मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो हमसफर सोनाली। आइए अब एक ऐसे बारे में बात करते हैं जिससे हम अपने परिवार में हमेशा कहीं ना कहीं इस बात से दो चार होते रहते हैं। देखिए क्योंकि एक ही घर में बड़े होते हैं बच्चे, कभी अगर अकेला हो तो कोई बात नहीं, पर एक से ज़्यादा होते हैं तो कभी एक दूसरे के बिना उनका मन नहीं लगता, तो कभी छोटी सी बात पर ऐसे लड़ते हैं जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हो गई हो। और सच में दोस्तों कभी खिलौनों के लिए झगड़ते हैं, कभी माँ की गोद में पहले बैठने की होड़ होती है तो कभी इस बात की शिकायत कि मुझे कम प्यार मिला है। तो भाई बहनों के बीच ना ऐसी नोकझोंक और थोड़ी बहुत जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कई बार यही छोटी सी होड़ जो होती है ना वो धीरे धीरे मन में तुलना, जलन या फिर ना हीन भावना पैदा कर सकती है। ऐसे में जो माता पिता हैं उनकी भूमिका जो होती है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। अक्सर माता पिता अनजाने में बच्चों की तुलना कर बैठते हैं, देखो तुम्हारी बहन ने कितना अच्छा किया या भाई से कुछ सीखो। ऐसी जो बातें होती हैं सहज तो लगती हैं लेकिन बच्चे इन्हें दिल पर ले लेते हैं बहुत बार। तो ऐसे में ना हर बच्चे की अपनी खूबी और अपनी गति और अपनी पहचान होती है। देखिए हम सभी जानते हैं कि हम सभी किसी एक जैसे नहीं हैं, सभी एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए तुलना करने के बजाय उसके प्रयास की सराहना करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब दोनों बच्चों के बीच में अगर झगड़ा हो तो आप ना बिल्कुल किसी एक को सही और दूसरे को गलत ठहराने के बजाय दोनों की बात सुनिए। और फिर बराबरी का मतलब यह नहीं कि दोनों को हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी मिले। असली बराबरी तो ये है कि हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक प्यार, समय और भरोसा मिले, है ना। और क्योंकि भाई बहन आज भले एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें लेकिन कल यही रिश्ता उनके जीवन का सबसे मजबूत सहारा बन सकता है और बनता है।

और उस रिश्ते की नींव बचपन में ही पड़ती है। तो जिम्मेदारी हमारी होती है, माता पिता की होती है कि हम अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जिंदगी में उनका साथ, एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें हर खुशी हर गम एक दूसरे के साथ बांटना है, जिंदगी को रंगीन बनाना है।

सत्ते पे सत्ता इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, सपन चक्रवर्ती, भूपेंदर और राहुल देव बर्मन की आवाज में ये गीत। देखिए, हमारे सवाल का जवाब हमें हमारे एक और श्रोता ने भेजा है। आप हैं गौरी शंकर जी, नांगलोई से लिखते हैं। सोनाली बेटा राम राम। राम राम गौरी शंकर जी। आप लिखते हैं, उम्र हो गई

हर साल मैं करीब 18 साल से रोजाना 1 घंटा योग करता हूँ। फिर भी 1.5 साल पहले घबराहट सी हो गई थी। डॉक्टर ने एक स्टंट डाल दिया दिल में, लेकिन योग मैं अभी भी नहीं छोड़ता, रोजाना करता हूँ। बहुत तसल्ली मिलती है, मन भी खुश होता है। बाकी आपका प्रोग्राम भी योग का काम करता है, यानी खुशी मिलती है। वाह वाह, हमें जानकर भी बहुत अच्छा लगा गौरी शंकर जी कि आपको हमारा प्रोग्राम सुनकर अच्छा लगता है। हमेशा बने रहिए हमारे साथ। अच्छा दोस्तों, जरा अपनी छत की तरफ देखिए। अरे वजह है, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखिए, जरा अपनी छत की तरफ देखिए। दिन भर वहां पड़ने वाली धूप ना यूं ही चली जाती है, मानते हैं ना? लेकिन अब यही धूप आपके घर की बिजली बनाने में काम आ सकती है और बिजली के खर्च को कम करने में भी मदद कर सकती है। कैसे, बताती हूँ। देखिए, दिल्ली सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने के लिए नया पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है ना? और इस योजना में दिल्ली के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उनके लिए 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम बिना शुरुआती भुगतान के लगाने की व्यवस्था की गई है, बशर्ते योजना की पात्रता और तकनीकी शर्तें पूरी होती हों। हाँ, अब इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3 किलोवाट तक के संयंत्र पर अधिकतम 78,000 रुपये की सहायता है। दिल्ली सरकार भी अधिकतम 78,000 रुपये तक की पूंजीगत सहायता दे रही है। यानी दोनों को मिलाकर अधिकतम सहायता आपके पास कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1,56,000, है ना? और शायद यही सबसे राहत वाली बात है कि जो सोलर संयंत्र है उसको लगाने के बाद जो सबसे ज्यादा राहत देने वाली बात है वो है कि आप इसको लगाने के बाद में 5 साल तक उसकी सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी जो उसका अधिकृत विक्रेता होगा ना, उसकी होगी। यानी इस अवधि में इसके लिए जो उपभोक्ता है उस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं डाला जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ना दोस्तों, तो दिल्ली सरकार की जो आधिकारिक सोलर पोर्टल है, जो है solar.delhi.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल पर अपने बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी और मोबाइल सत्यापन के जरिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आवेदन जो है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। हाँ, फिलहाल पोर्टल के मुताबिक इस चरण में पहले 2,20,000 पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जाना है और आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो है 28 फरवरी 2027। तो आपके पास वक्त है, लेकिन बहुत वक्त नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो दोस्तों, अगली बार जब धूप आपकी छत पर उतरे ना, जैसे आज भी उतरी है, तो शायद उसे सिर्फ गर्मी की वजह ना समझिए। हो सकता है वही धूप आपके घर की बिजली का एक हिस्सा भी बना रही हो।

फिल्म दिल ने फिर याद किया, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे इस गीत को। अब देखिए हमारे साथ हमारे एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, कहाँ से, शांतिनगर सोनीपत से। लिख रहे हैं, आदरणीय सोनाली जी स्वस्थ सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन। सुरीली वाणी, सुंदर बातें, सदाबहार गीत, सुहाना कार्यक्रम, सबसे बड़ी बधाई, शुक्रिया। और वो लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे, उन्होंने कुछ कोट्स लिखे हैं, देखिए, सदा खाओ स्वस्थ, सादा खाओ स्वस्थ हो जाओ, पानी पियो स्वच्छ सदा रहो स्वस्थ, क्यों क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बनी वाणी। वाह वाह क्या बात है, बिजी रहो इजी रहो, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया इतनी सारी प्यारी प्यारी बातों के लिए सुदर्शन जी। और आपकी इन्हीं प्यारी और प्रेरक बातों ने हमें याद दिलाया कि हम आपके साथ एक ऐसी प्रेरक शख्सियत की बातें साझा करना चाहती हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लद्दाख की पहली महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ की, डॉक्टर त्सेरिंग लैंडोल की। क्योंकि कभी कभी एक इंसान का काम सिर्फ इलाज नहीं करता, पूरी सोच बदल देता है। और डॉक्टर त्सेरिंग लैंडोल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1945 में लेह में जन्मी डॉक्टर लैंडोल ने चिकित्सा की पढ़ाई श्रीनगर की सरकारी मेडिकल कॉलेज से की और स्त्री रोग एवं प्रसूति में विशेषज्ञता हासिल की। वर्ष 1989 में लेह लौटकर उन्होंने लद्दाख की पहली महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम शुरू किया। उस दौर में ना लद्दाख की महिलाओं तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचना आसान नहीं था, तो उन्होंने अस्पताल के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में जाकर महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारियां देनी शुरू की। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका काम बदस्तूर जारी रहा और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उनके योगदान को देखते हुए पता है उन्हें 2006 में पद्मश्री और फिर 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर त्सेरिंग लैंडोल की कहानी यही कहती है कि बदलाव हमेशा बड़ी साधनों से नहीं होते दोस्तों, कभी कभी एक समर्पित इंसान और उसका काम ही पूरे समाज को एक नई राह देता है।

फिल्म ममता में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अच्छा दोस्तों, कभी आपने सोचा है हमारी रसोई से रोज कितना खाना बिना खाए ही कूड़ेदान में चला जाता है? कभी ज्यादा बन गया, कभी सब्जी खराब हो गई, कभी फ्रिज में रखा खाना याद ही नहीं रहा। छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर खाने की बड़ी बर्बादी बन जाती हैं। हर साल 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपव्यय के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसी बात के मद्देनजर मनाया जाता है। 2026 की जो थीम है वो है खाद्य हानि और अपव्यय कम करने की परिवर्तनकारी क्षमता। अब इसका सीधा संदेश यही है कि भोजन की बर्बादी कम करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो शुरुआत अपने घर से कैसे करें? सबसे पहले जितनी जरूरत हो उतने ही खरीदारी करें। बाजार जाने से पहले रसोई और फ्रिज में मौजूद सामान देख लें और उसी हिसाब से सूची बनाएं। दूसरा, जरूरत से ज्यादा खाना ना बनाएं, फिर भी अगर बच जाए तो उसे तुरंत सही तरीके से रख दें। अगले दिन उसी खाने को थोड़ा नया रूप देकर इस्तेमाल किया जा सकता है। बची हुई सब्जी से पराठा बना लिया, दाल से दाल का चीला या चावल से पुलाव बनाया जा सकता है ना। और तीसरा, फ्रिज में सामान इस तरह रखें कि पुरानी चीजें पीछे छुप कर न रह जाए। जो सामान पहले खरीदा है उसे पहले इस्तेमाल करें, नया सामान पीछे और पुराना सामने रखें ताकि कोई चीज भूल कर खराब ना हो जाए। एक छोटी सी आदत और डाल लें, थाली में उतना ही लें जितना खा सकें। मन हो तो बाद में और ले सकते हैं, लेकिन थाली में बचा खाना सीधे कूड़ेदान में ना जाए, इससे आप जरूर बचें। याद रखिए, अन्न को बचाना सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, उसके पीछे किसान की मेहनत, पानी, मिट्टी, समय और बहुत से लोगों का श्रम जुड़ा है। तो इस बार संकल्प सिर्फ इतना ही, थाली में उतना ही आए जितना खाया जाए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म ज्वारभाटा में लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। और अब बस घड़ी मुझे और मौका नहीं देती आपके साथ बातों को जारी रखने का, तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत भी किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और

0: पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्की फ्रेम्स 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि कोई कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी विषय, स्थान या मुद्दे के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और समाज को एक दूसरे को समझने के तरीके को आकार दे सकती है।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि यह प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, यह पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: फिक्की एम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अब फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, गेमिंग, खेल, संगीत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तारित हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव प्रभात ने गलत सूचना, सिंथेटिक कंटेंट और तेजी से उत्पन्न हो रही एआई जनित सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करता है और पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1900 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation. Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. He pointed out that India is a society of small producers, small agriculture producers, and small factories. He added that apart from the per capita gap between India and the US, the nature of production and the nature of society are very different. He said a trade negotiation required a certain amount of patience and detailing to see it through. He admitted that tariffs did create a bump for the relationship last year. India and Saudi Arabia reviewed cooperation in defence, security, trade, investment, energy, technology, healthcare and education during a meeting with Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadan on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Finance Minister Nirmala Sitharaman described Saudi Arabia as a trusted and valued strategic partner of India. They welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-Saudi Arabia bilateral investment treaty aimed at providing a stronger and more predictable framework for investments.

श्रोताओं, पवित्र पापी राजेंद्र भाटिया द्वारा निर्देशित 1970 की एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में बलराज साहनी पन्नालाल के किरदार में हैं, परीक्षित साहनी केदारनाथ के किरदार में हैं, तनुजा वीणा की भूमिका निभा रही हैं और नीतू सिंह विद्या यानी बेबी सोनिया के किरदार में शामिल हैं। ये फिल्म प्रसिद्ध लेखक नानक सिंह के एक पंजाबी उपन्यास पर आधारित है।

0: खेलू लचक लचक के
1: आहे,
0: जरा मटक मटक के
1: आहे,
0: लट झटक झटक के
1: आहे।
0: चल एड़ी मेड़ी
1: चल अज टपा
0: चल।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म पवित्र पापी की। आपको बता दें, प्रेम धवन ने इस फिल्म के लिए गीत और संगीत दोनों की रचना की है। इस फिल्म का गीत तेरी दुनिया से किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। किशोर कुमार के निधन के समय ये गीत रेडियो और टेलीविजन चैनलों पर बजाया गया था। और रफ़ी साहब का एक अन्य गीत अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे हरियाणा के एक जिले जिंद में स्थित रानी तालाब नामक एक प्रसिद्ध स्थान पर फिल्माया गया था।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
3: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल वो कहाँ है मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी केदारनाथ के इर्द गिर्द घूमती है जो पन्ना लाल नामक व्यक्ति की जगह घड़ी मरम्मत की दुकान में नियुक्त होता है, जिसके कारण पन्ना लाल केदारनाथ को कोसता है और कहता है कि उसी के कारण उसका परिवार कंगाल हो गया है। पन्ना लाल केदारनाथ को पत्र लिखकर कहता है, तुम्हारे कर्मों ने मुझे मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया है, क्योंकि ना तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूं, ना तो अपनी बेटियों की शादी। इसके बाद पन्ना लाल अपनी पत्नी को बताता है कि वो पुराने मित्र से मिलने और धन जुटाने शहर जा रहा है और वहां से चला जाता है, फिर कई दिनों तक वापस नहीं आता। केदारनाथ को जब ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो पन्ना लाल की पत्नी माया को और दो बेटियों वीणा और विद्या की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वो उनके घर में एक कमरा किराए पर लेता है और पन्ना लाल की पत्नी माया को पत्र लिखता है जो पन्ना लाल के भेजे गए पत्रों की तरह माया तक पहुंचते हैं और इन पत्रों में पैसे भी होते हैं। इसी दौरान केदारनाथ को पन्ना लाल की बड़ी बेटी वीणा से प्रेम हो जाता है, पर वीणा को ये एहसास नहीं होता। केदारनाथ को ये बाद में पता चलता है कि वीणा की शादी पहले से तय थी और उसकी शादी में पैसे कम पड़ने की वजह से केदारनाथ अपने मालिक की दुकान से पैसे चुराकर माया को दे देता है। बाद में जब पता चलता है कि वीणा की ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं तो वो उसे सुलझाकर वहां से चला जाता है। तो श्रोताओं, ये थे फिल्म पापी पवित्र की कहानी।

श्रोताओं, यह फिल्म भावनाओं, त्याग और इंसानी मजबूरियों के बीच उलझे शख्स की कहानी है जो झूठ और चोरी जैसे पाप तो करता है पर उसकी नीयत बिल्कुल निस्वार्थ और साफ रहती है। तभी इस फिल्म का टाइटल दिया गया है पवित्र पापी।

0: 6 गुना करके 130 करोड़ करना है। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि मुल्क में जिन हवाई अड्डों पर परवाजें चलाई जा रही हैं उनकी तादाद साल 2014 में 74 थी और अब ये तादाद 166 से ज्यादा हो गई है। भारत और सऊदी अरब ने दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, हिफ्जान सेहत और तालीम के मैदानों में तआवुन का जायजा लिया है। सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान के साथ एक मीटिंग के दौरान जो दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग मुनाकिद की गई, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सऊदी अरब को भारत का एक भरोसेमंद और काबिल कद्र अहम शराकत दार करार दिया। दोनों वजराए खजाना ने भारत सऊदी अरब दो तरफा सरमायाकारी समझौते के बारे में मुजाकरात की कामयाब तकमील का खैर मकदम किया। इस समझौते का मकसद सरमायाकारी के लिए एक मजबूत तर और मजीद काबिल एतबार फ्रेमवर्क फराहम करना था। मोहतरमा सीतारमन ने स्विट्जरलैंड के AIIB गवर्नर सफीर पियत्रो लाजेरी से भी मुलाकात की और NIIF, नीज, गिफ्ट IFSC समेत भारत में सरमायाकारी के मौकों पर बातचीत की। उन्होंने नेपाल के वजीर खजाना स्वर्णिम वागले से सैलाब की सूरत हाल से बहाली और दो तरफा प्रोजेक्टों पर बातचीत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने आज राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। बीजेपी के रहनुमाओं और मरकजी वजरा हरदीप सिंह पुरी, BL वर्मा, समाजवादी पार्टी रहनुमा राम गोपाल यादव, BSP के रामजी और 6 दीगर अरकान की मुद्दत कार 15 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए जिमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये सीट TMC की रुकने पार्लियामेंट रुक्मिनी मलिक के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग हालिया तंजीमी तकर्रियों के बाद पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में सभी रियासतों के इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस ने शिरकत की और इसमें पार्टी की तंजीमी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बारापुला फेज 3 कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। इस कॉरिडोर से मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के दरमियान बिना किसी रेड लाइट के कनेक्टिविटी फराहम होगी, जिससे मशरकी और जनूबी दिल्ली के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर मौसूफ ने 1,900 करोड़ रुपए से जायद मालियत वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का भी आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता, अवामी कामकाज से मुतालिक महकमे के वजीर प्रवेश साहिब सिंह, शहरी तरक्की के वजीर आशीष सूद और दीगर वजरा ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये मुसलसल आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि किस तरह माइकोव प्लेटफॉर्म के जरिए ये विजन हकीकत में तब्दील हुआ।
1: वक्फ से मुतालिक 2025 का तरमीमी बिल एक अहम कानूनी कदम है, जिसके जरिए हुकूमत ने सदियों पुराने तसव्वुरात को खत्म करने की कोशिश की। इस कानून के जरिए न सिर्फ वक्फ इमलाक का बेहतर बंदोबस्त किया जा सकेगा, बल्कि इमलाक में खवातीन की विरासत भी यकीनी हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ से मुतालिक बिल की मंजूरी और मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूरी एक यकसर तब्दीली वाला लम्हा था। दाऊदी बोरा समाज के साथ बातचीत में उन्होंने जिक्र किया कि इस कानून पर अमल मुस्लिम खवातीन और मुसलमानों के दीगर अकलियती तबकों के साथ जारी नाइंसाफी का जायजा लेने के बाद किया गया।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो, तो ये रातों रात नहीं आया है। लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सर। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: उस्मान गनी ने, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील हैं, कहा कि वक्फ में की गई तरमीम से मुस्लिम खवातीन को इमलाक में उनका हक मौसूल हुआ है।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में

0: बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है, महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वाकअप बोर्ड और वाकअप काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वाकअप बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकअप काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
2: यूनेस्को की आरिजी फहरिस्त में भारत के 5 नए मकामात और सिलसिलावार नीज बैन अल-अक़वामी नामजदगियों की तजावीज शामिल की गई हैं, जिसके बाद इस फहरिस्त में भारत के मकामात की तादाद बढ़कर 78 हो गई है। नए शामिल किए गए मकामात में बागकारों की बुधमत से मुतालिक दीवारों पर बनाई गई तस्वीर शामिल हैं। एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने खवातीन के इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय शूटर बनकर तारीख रकम की है। आशिमा अहलावत और मनीषा कीर के खवातीन के टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने के बाद भारत को ये सोने का तमगा हासिल हुआ है। बॉक्सिंग में प्रवीण हुडा और अंकुश पंघल ने आज निशियो में अपने मुकर्रा वजन के जुमरों में सोने का तमगा हासिल किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद से मुतालिक तातुल को हल करने से भारत चीन तालुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन का जायजा लिया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने तारीख रकम की है। उन्होंने खवातीन के इनफरादी ट्रैप मुकाबले में पहला इनफरादी एशियन गेम्स सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India emerging as a major aviation hub and on the way to become the world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. India and Saudi Arabia review cooperation in defence, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Dhanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at women's individual trap event. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jayashankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said that India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve the interests of any nation.
4: We had long been telling the Chinese, I've been saying it personally at my level, that look, a standoff between us, a dip in our relationship actually doesn't help either of us. In fact, it is third parties who will take advantage of that. So we also maintain consistently a very elementary principle of statecraft, which is don't get locked into a problem which benefits others. And it took a little while, I think, the Chinese side to agree with that for whatever reason. But I don't think that long standoff served our interests. It certainly didn't serve theirs. And to the extent there is an improvement in our relations, I think it certainly helps our position.
3: Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. The External Affairs Minister also stated

0: area of 220 square kilometers. It was officially notified as a wildlife sanctuary on September 4, 1998. According to Assam Forest Department 2024 elephant census, 140 elephants were recorded within its boundaries. The sanctuary was once home to hundreds of elephants, but they abandoned the area due to increasing human activities and land encroachments. However, the eviction of these encroachers and a strong emphasis on restoring greenery through afforestation have helped restore the ecological balance of the forest. As a result, herds of elephants are now being seen in those areas where they had not been spotted for many years. With Rajat Bharadwaj from Sonitpur, Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
1: At the Asian Games 2026, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win a gold medal in the women's trap individual event. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Panghal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish. In the men's javelin throw, Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. India has won a total of 48 medals at the Asian Games 2026. The current tally includes 5 gold, 21 silver and 22 bronze medals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India emerging as a major aviation hub and on the way to become the world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. India and Saudi Arabia review cooperation in defence, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Dhanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at Women's Individual Trap event. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉ. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

0: इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
2: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
3: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो, तो ये रातों रात नहीं आए। लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
2: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
4: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी सूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
5: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाए वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
6: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाय रूपाय वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998

0: सोनितपुर से रजत भारद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और आप प्रस्तुत है आपका मनपसंदता सेगमेंट एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज के जो हमारे कलाकार हैं वो एक हास्य कलाकार हैं। हास्य कलाकार के तौर पर किए गए अद्भुत अभिनय के लिए वे जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलाकार महमूद अली की। 3 दशक लंबे चले उनके करियर में उन्होंने 300 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। महमूद अभिनेता और नृत्य कलाकार मुमताज अली के 9 बच्चों में से एक थे। तो शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की हमारे आज के कलाकार, और इनके बारे में करेंगे खूब सारी रोचक बातें। फिलहाल सुनते हैं उनकी ही फिल्म से ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो है महमूद। इस शो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, और हम बात कर रहे हैं कलाकार महमूद की। महमूद का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। अपने माता पिता की 8 में से दूसरे नंबर की संतान महमूद ने शुरुआत में बाल कलाकार के तौर पे कुछ फिल्मों में काम किया था। उनकी भाषा में हैदराबादी जुबा का पुट दर्शकों को बेहद पसंद आया, और उनकी संवाद अदायगी और अभिनय के लाजवाब अंदाज ने जल्द ही करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। महमूद ने जिस वक्त फिल्मों को गंभीरता से लेना शुरू किया, तब भारतीय फिल्मों पर किशोर कुमार की कॉमेडी का जादू छाया था।

श्रोताओ, एक बार की बात है, लेखक मनमोहन मेलविले ने अपने एक लेख में महमूद और किशोर के दिलचस्प किस्से को बयां किया था। इसमें कहा गया है कि महमूद ने अपने करियर में सुनहरे दौर से गुजर रहे किशोर से अपनी किसी फिल्म में भूमिका देने की गुजारिश की थी, लेकिन महमूद की प्रतिभा से पूरी तरह वाकिफ किशोर ने कहा था कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को मौका कैसे दे सकते हैं जो भविष्य में उन्हें चुनौती दे सके। इस पर महमूद ने बड़े दिलचस्प जवाब में कहा कि एक दिन मैं भी बड़ा फिल्मकार बन जाऊंगा और आपको अपनी फिल्म में भूमिका दे दूंगा। महमूद अपनी बात के पक्के साबित हुए और आगे चलकर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पड़ोसन में किशोर को रोल दिया। इन दोनों महान कलाकारों की जुगलबंदी ने ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे विलक्षण कॉमेडी फिल्म बनकर उभरी।

0: क्या करते हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ूं?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझूं?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
1: आओ ना।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता, अभिनेता के तौर पर महमूद पहले छोटे मोटे काम करते थे, वाहन चलाने का काम भी करते थे। उस जमाने में मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया था। बाद में उन्होंने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी की। शादी करने और पिता बनने के बाद ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने अभिनय करने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने 2 बीघा जमीन और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे पात्र निभाए। महमूद को फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक जो मिला वो फिल्म परवरिश में मिला था। इसमें उन्होंने फिल्म के नायक राज कपूर के भाई का किरदार निभाया था। बाद में उन्होंने फिल्म गुमनाम में एक दक्षिण भारतीय रसोइये का कालजाई किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने प्यार किए जा, प्यार ही प्यार, ससुराल, लव इन टोक्यो और जिद्दी जैसी हिट फिल्में दी। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिका भी निभाई, लेकिन दर्शकों ने उन्हें एक कॉमेडियन के तौर पर ज़्यादा पसंद किया।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, हमारे पास भर भर की संदेश आ रहे हैं, तो चलिए उन संदेश को पढ़ते हैं। पहला संदेश जो आया है वो है प्रकाश रंभाड़े का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से। इनके साथ है भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल। स्वर्ण सिंह हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह, गांव लोहगर ठाकुरावाला से। अगला संदेश है नितेश देवांगन का है, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तेलब, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन और दिग्दर्शन गौर हमें संदेश भेज रहे हैं, के साथ है कविता गौर, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं मेरठ कैंट से। अगला जो संदेश है वो है गुरमीत सिंह का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं साउथ एक्सटेंशन, इनके साथ हैं मीता, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमें लिखकर भेज रहे हैं। ताज मोहम्मद का संदेश आया है, इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। हरजिंदर शिंदा में संदेश भेज रहे हैं पंजाब से, इनके साथ है जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। अगर जो संदेश है वो आर कुमार का, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, इंद्रभान सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं। और धर्मेंद्र छीपा का अगला संदेश आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, इनके साथ है कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, फारूक अली खान।

हमें संदेश भेज रहे हैं, अजीत भावसर हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं प्रमिला भावसर। अगला जो संदेश है तुलसी मस्कीन का, और इनके साथ है वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, और राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और जो अगला संदेश है रवि कुमार, राहुल रवि, इनके साथ है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशत सिंह राहुल, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं अम्बाला हरियाणा से। अगला जो संदेश है राजकुमार डूडी का है, और इनके साथ हैं प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरांसी, जिला हिसार से। साथ ही अगला संदेश है प्रकाश वर्मा का, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। संजय ढींगिया हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं नमन ढींगिया, पा ढींगिया, बागपत, उत्तर प्रदेश से। मस्कीन हमें लिखकर भेज रहे हैं, और जो अगला संदेश है सुदर्शन मुखी का, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान से। और जो श्रोताओं अगला संदेश है वो हम ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

प्रथा 23 जुलाई 2004 में नींद में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। हिंदी सिनेमा में वे एक महान हास्य अभिनेता, गायक, निर्देशक और निर्माता थे, जिन्हें आज भी हम उतना ही याद करते हैं जितना उन्हें पहले किया करते थे, और वो प्यार और वो याद आज भी बरकरार है।

श्रोताओं, हमारे पास संदेश आया है पंकज शर्मा का और इनके साथ हैं संदीप जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, जगी दुआ जी। और जो अगला संदेश है वो है अमर रमेश कुमार खत्री का और इनके साथ है टेलर मास्टर कृष्णलाल खत्री, शंकर गुल शर्मा। श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा ये आज का ये कार्यक्रम आज एक ही कलाकार यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगी ठीक दिन के 2:30 पर। तब तक के लिए हम बने रहिए हमारे आगे के कार्यक्रमों में, जो कि आप सुनेंगे दिन के 3:00 मैथिनी मेलोडीज़।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त अपराह्न के 3 बज चुके हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। इस कार्यक्रम में मैं दीक्षा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की फिल्म कटी पतंग के गीत के साथ किशोर कुमार की आवाज़ में।

फिल्म कटी पतंग से सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इस फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और सुरों से संजाया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, इस गीत को जिस मस्ती, शोखी और भावनात्मक अंदाज में गाया गया वैसे एक अलग ही पहचान बनाता है। उनकी आवाज़ में प्रेम की मासूमियत और बेफिक्री दोनों ही महसूस होती है। गीत की पंक्तियां प्रेम को किसी बंधन में ना बनने वाली भावना के रूप में प्रस्तुत करती है। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मेरे जीवन साथी से किशोर कुमार।

मेरे जीवन साथी से सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। किशोर दा ने इस गीत को बेहद मुलायम और भावपूर्ण अंदाज में गाया था। आरडी बर्मन ने इस गीत में मधुर और सहज संगीत का इस्तेमाल किया था और साथ ही मशरू सुल्तानपुरी ने प्रेमी के मन की भावनाओं को बेहद सरल शब्दों में पिरोया था। तो श्रोताओ, आइए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में और सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म प्रिंस से।

श्रोता फिल्म प्रिंस से सुन रहे थे ये गीत। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को अपनी खास रोमांटिक शैली में गाया है। उनकी आवाज़ में जोश, मस्ती और शरारत का अनूठा मेल सुनाई देता है। साथ ही शम्मी कपूर ने अपने खास डांस स्टाइल, चेहरे के भाव और ऊर्जा से गीत को बेहद आकर्षक बनाया है। शंकर जयकिशन ने गीत में आकर्षक लय और मधुर धुन का इस्तेमाल किया है। साथ ही गीतकार हसरत जयपुरी ने प्रेमिका की सुंदरता और उसके आकर्षण को सितारों के रूपक के जरिए व्यक्त किया है। गीत के बोलों में रोमांस के साथ साथ हल्की सी शरारत भी दिखाई देती है। तो श्रोताओं, आइए सुनवाती हूँ आपको अपना अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, गाइड फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसने लता जी ने सुरीली और भावपूर्ण गायकी इस गीत में पेश की है, और वो खुशी, उत्साह और आत्मविश्वास के भावों को जिंदा किया है। इस गीत में वहीदा रहमान की सहज अदाकारी और नृत्य रोजी की आंतरिक खुशी और स्वतंत्रता को खूबसूरती से निभाया है।

0: दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से सुन रहे थे ये गीत। अजीब दास्तां है ये गीत के बोल प्यार की ऐसी उलझन को दर्शाती है जिसमें इंसान खुद नहीं समझ पाता कि उसकी प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म होगी। लता जी ने इस गीत को जिस नज़ाकत और भावुकता से गाया है वह इसके दर्द और रोमांस को एक साथ उभारती है। श्रोताओं, इस गीत की मधुर धुन और सुरीला संगीत इसे 1960 के दशक के यादगार फिल्मी गीतों में शामिल करते हैं। गीत में मीना कुमारी के चेहरे के भाव और उनकी सहज अदाकारी किरदार की भावनात्मक स्थिति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं हम अगले गीत की ओर, लेकिन इससे पहले पढ़ते हैं ये संदेश जो हमें भेजा है सुदर्शन मुखी ने। इनके साथ हैं नीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और आपका संदेश हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मस्कीन दादा हमें भेज रहे हैं, और उन्होंने भी लिखा है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जब हमें इतनी दुआएँ देते हैं तो हमारे अंदर का मनोबल और बढ़ जाता है। श्रोताओं, चलिए बढ़ते हैं क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, और इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत भी हम आपको पेश करना चाहते हैं। मन तो नहीं है छोड़कर जाने का, लेकिन इस गीत के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ़िलहाल आज के लिए। तो आइए सुनते हैं ये फिल्म हम दोनों से, ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल सुरों में।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तब तक ले मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: अपनी आप बीती जिक्रे मीर में भी लिखी।
1: जी
0: उर्दू जबान को वो वकार चाशनी मीर ने दी, इसी ने आने वाले दौर के शोरा जैसे गालिब जौक और हसरत मुहानी के लिए रास्ते हमवार किए।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने, गालिब जौक और हसरत मुहानी के लिए उन्होंने रास्ते हमवार किए। तभी तो गालिब ने कहा था कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो। गालिब मीर ने तकरीबन 87 साल की तवील उम्र पाई और 20 सितंबर 1810 में लखनऊ की मिट्टी में आसूदा खाक हुए। लेकिन 2 सदियां गुजर जाने के बाद भी उनका कलाम आज भी उतना ही ज्यादा असर अंगेज है जितना के उनके जमाने में उस कलाम की अहमियत थी।
0: सही कहा शाहनवाज, मीर की यादें और उनका कलाम तो एक समंदर है,
1: जी
0: इसलिए उनके बारे में जितनी बात की जाए कम है। क्या खूबसूरत शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है।
1: जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो फरीन साहिबा क्यों ना ये शेर हम किसी गुलूकार के आवाज में अपने सामईन को भी सुनवाएं?
0: ये तो बहुत अच्छी बात होगी शाहनवाज।
1: तो आइए सामईन इकराम सुनते हैं ये मशहूर गजल, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं।
0: जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है।

0: वाह क्या बात है, बहुत खूब। इस खूबसूरत सी गज़ल के बाद फरहीन साहिबा, हम अपने सदाए सुखन में किसे आवाज़ देने वाले हैं?
1: वैसे तो शाहनवाज बहुत हैं, लेकिन मैं नाम लूंगी रईस अमरोही का।
0: जी
1: उर्दू अदब की तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिनकी जगह सदियों तक पुर नहीं हो सकती। एक
0: मुमताज़।
1: ऐसी ही हमजहत शख्सियत मुमताज शायर, मायानाज, सहाफी, दानिश्वर रईस अमरोही की है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। रईस अमरोही सिर्फ एक फ़र्द का नाम नहीं, बल्कि वो अपनी ज़ात में मुकम्मल अंजुमन और एहसास उस्ताद थे। रईस अमरोही की इल्मी और अदबी तरबियत एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ इल्मो हुनर की फरावानी थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही शेर कहना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या कहिए कि एक ऐसा सानहा गुजरा कि हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन एक ऐसी निशान खींच दी गई जिसका दर्द और जिसके निशानात आज भी हमारे दिलों पर मौजूद है, यानी कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे में रईस अमरोही कराची चले गए।
1: सही कहा आपने, एक बहुत अच्छा शायर हमसे दूर हो गया। दरअसल उनकी सहाफती खिदमात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने रोजनामा जंग से तवील अरसे तक वाबस्तगी बरकरार रखी। उनके लिखे हुए कतात रोजाना अखबार की जीनत बनते थे, जो न सिर्फ सियासी और समाजी सूरत हाल पर गहरा तंज होते थे, बल्कि अवामी जज्बात के सच्चे तर्जुमान भी होते थे।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने।
1: उनके कतात का मजमुआ अलिफ उर्दू अदब का एक अनमोल असासा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे अगर फरहीन साहिबा हम उनकी शायरी की बात करें
1: जी जी
0: तो रईस अमरोही बुनियादी तौर पर नज्म और गज़ल के मुनफरिद शायर थे। कतात भी
1: जी
0: लिखा उन्होंने। उनके कलाम में फ़लसफियाना गहराई, तसव्वुफ और इंसानी नफ्सियात के गहरे रंग नज़र आते हैं। उनके शेरी मजमुओं में मसनवी लिसानुल ग़ैब, पसे गुबार, हिकायात ने और मलबूसे बहार को लाजवाल शोहरत हासिल हुई
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, उनकी शायरी का खास पहलू ये भी तो था कि वो जितने अच्छे क्लासिकी शायर थे, इतने ही जदीद दौर के तकाजों से भी हमाहंग थे।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने। फरहीन साहबा, आपको और हमारे सामईन को भी ये बात सुनकर हैरानी होगी
1: जी
0: कि रईस अमरोही की शख्सियत का एक और हैरत अंगेज पहलू उनका माबादुद तबियात यानी मेटाफिजिक्स और नफ्सियात है।
1: अच्छा
0: नफ्सियात से उनका गहरा ताल्लुक था, इसलिए
1: जी
0: उन्होंने उर्दू दा तबके को एक बिल्कुल नई सोच और एक नई राह से रोशनास और हमकिनार करवाया,
1: अरे वाह,
0: जिसका असर आज भी देखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। उनकी इल्मी वुसअत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है शाहनवाज, कि उन्होंने साइंसी और नफ्सियाती मौजूआत को इंतहाई सादा और आम फहम उर्दू में पेश किया।
0: बिल्कुल, लेकिन हम क्या करें, मौत बरहक है, लेकिन अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि 22 सितंबर 1988 को इल्मो अदब का ये चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए गुम हो गया, खो
1: अफसोसद
0: गया।
1: अफसोस
0: उनकी लाजवाल शायरी हमेशा हम सब के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: उनका एक बहुत खूबसूरत शेर है,
0: जी
1: सिर्फ तारीख की रफ्तार बदल जाएगी,
0: सिर्फ तारीख की रफ्तार बदल जाएगी।
1: नई तारीख के वारिस यही इंसान होंगे।
0: जी हाँ सामीन, इसी शेर के साथ हम अपनी पूरी टीम की जानिब से रईस अमरोही को खराजे अकीदत पेश करते हैं। और सदाए सुखन में हम एक ऐसे इंसान के बारे में आपको हम बताएंगे, उनके बारे में आपसे हम गुफ्तगू करेंगे फरीन साहिबा, और अपने सामईन को
1: जी
0: भी बताएंगे जिसने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में आज़ादी का परचम उठाया था। जी हाँ, मेरी मुराद है
1: हसरत
0: हसरत
1: मोहानी
0: मोहानी
1: से।
0: से।
1: बिल्कुल, हसरत मोहानी सिर्फ एक शायर नहीं, मुजाहिदे आजादी भी थे। हसरत मोहानी एक अहद का नाम है शाहनवाज।
0: बिल्कुल, और उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि वो बैक वक्त एक सच्चे आशिके रसूल,
1: जी
0: एक इनकलाबी, एक सियासतदान, एक
1: बिल्कुल,
0: महबूब, एक आशिक और एक बेमिसाल गज़ल गो शायर थे।
1: हरफन मौला थे।
0: बिल्कुल कह सकते हैं हम।
1: सही कहा आपने, उन्होंने गजल को रिवायती इश्क व आशिकी के बंधनों से निकालकर इसमें सियासत, समाज और आजादी का रंग भर दिया।
0: बिल्कुल सही कहा, और आप तो सही कहती ही हैं और सच भी है कि जो खातून होती हैं वो सही कहती हैं। हमारे सामईन भी बखूबी इस बात को समझते हैं कि खातून के सामने किसकी जुबान चली है। बहरहाल उन

0: कि शायरी का जिक्र हुआ है और उनकी लाजवाल गजल याद ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। आपको मालूम है फरीन साहिबा वो कौन सी गजल है?
1: ये तो सबको ये पता है, शायद ये सब
0: जी
1: जानते हैं,
0: जी
1: और मेरी पसंदीदा भी है।
0: क्या है?
1: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
0: जी तो सामीन कराम, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना इन्हें भी याद है, और ऐसा लगता है कि ये गजल इन्हीं के लिए लिखी गई है, क्योंकि ये भी, अब आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो क्यों ना हम अपने सामईन को भी ये गजल सुना दें।
1: हाँ जरूर, बिल्कुल।
0: तो लीजिए समाप्त कीजिए।

0: वाह, क्या कहने हैं, क्या गजल थी। और फरीन साहिबा, और इस गजल को सुनते हुए जब ये गजल चल रही थी, सुना
1: जी
0: रहे थे, गुलूकार गा रहे थे, तो आपके चेहरे का तासुर देखकर मैं ये समझ रहा था कि ये गजल शायद हसरत साहब ने आपके लिए ही लिखी थी और आप ही के लिए कलमबंद किया था, क्योंकि उस गजल के हर हर लफ्ज पर आप आह और वाह और आपकी जो इशारे और किनारे थे बिल्कुल आया थे। तो
1: नहीं शाहनवाज, सच में वो गजल बहुत अच्छी है और रूह की गहराइयों में उतर जाती है।
0: क्या बात है, लेकिन हसरत की अजमत सिर्फ उनकी शायरी तक महदूद नहीं है,
1: हाँ ये तो है
0: बल्कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं।
1: जी। हाँ इस बात से मैं इत्तफाक रखती हूँ आपकी, वाकिफ भी हूँ कि हसरत मोहानी ने हमेशा सच का साथ दिया। उन्होंने एक रिसाला उर्दूए मौला भी निकाला जिसमें अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लिखने पर इन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: जी हाँ फरीन साहिबा, मैं भी इस बात से वाकिफ हूँ कि उन्हें चक्की की मशक्क़त की सज़ा भी मिली थी और उन्होंने उस सज़ा को भुगता भी था। इसके बावजूद भी उनके पैर इस्तक़लाल में लगजिश तक ना आई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी अना को, अपनी ईमानदारी को, अपनी खुददारी को और अपने वतन मोहब्बत को हाथ से ज़ाया नहीं होने दिया।
1: बहुत बड़ी बात है शाहनवाज, और इन्होंने उस पर एक शेर भी कहा।
0: अच्छा, किस पे, चक्की
1: जी
0: पे?
1: चक्की पर
0: जी जी
1: है
0: जी
1: मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी
0: क्या बात है,
1: है
0: मश्क
1: मश्क।
0: सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी,
1: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत
0: क्या
1: भी।
0: बात है, वाकई हसरत की तबीयत तो तुरफा तमाशा ही रही है। तो चक्की पीसते हुए भी शेर व शायरी की जा रही थी और उनकी खासियत भी यही रही है।
1: हाँ ये तो है, वो इंतहाई दरवेश सिफत इंसान थे।
0: सूत का कुर्ता पहनते थे, सस्ते दर्जे में यानी लोकल में सफर करते थे, लेकिन किसी के सामने सिर नहीं झुकाते थे।
1: हाँ बिल्कुल, उनकी जिंदगी सादगी सच्चाई और इनकलाब का एक हसीन इम्तिजाज थी। वो कृष्ण जी के भी मद्दाह थे शाहनवाज।
0: जी, और आपको ये भी बता दूं कि वो मक्का मुअज्जमा की हाजिरी के दीवाने भी थे। बिल्कुल
1: जी दोनों ही खूबियां थी उनके अंदर
0: सही
1: जो
0: कहा,
1: आजकल देखने को नहीं मिलती।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी शख्सियत में बला का तजाद था, मगर वो तजाद भी कितना खूबसूरत
1: बहुत
0: था।
1: खूबसूरत था
0: कभी उन्होंने मैं नोशी नहीं की, लेकिन उनकी शायरी में देखिए क्या गजब के
1: बिल्कुल,
0: बला के नोश नजर आते हैं।
1: सही बात
0: और
1: है
0: इसी तरह से उन्होंने कभी हकीकी इश्क तो किया होगा, लेकिन
1: जी
0: मिजाजी इश्क की तरफ उन्होंने कभी सोचा
1: जी
0: भी नहीं, लेकिन मिजाजी इश्क के बारे में उनसे बेहतर कौन बता सकता है।
1: बिल्कुल सही बात है। हसरत मोहानी ने साबित कर दिया कि कलम की ताकत को और सच्चाई की गूंज को जेल की सलाखें भी दबा नहीं सकती।
0: बिल्कुल, तो सामईन कराम, हम आपको ये भी बताते चले कि ये 13 मई 1951 को उर्दू अदब और सियासत का ये चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया, लेकिन उनकी गज़लें और उनका इनकलाबी जज्बा आज भी हमारे दिलों में मौजूद है, यानी इनकलाब जिंदाबाद। उनके इसी कौल के साथ हम अपनी पूरी टीम की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं।
1: शाहनवाज, सदाए सुखन में अब किसको याद कर रहे हैं आप?
0: देखिए, हमने शायरों को तो याद कर लिया,
1: जी
0: अब अदीब को अगर हम याद ना करें तो बेईमानी होगी, और अपने आप
1: बिल्कुल
0: से बेईमानी होगी, उस अदीब से नहीं, अपने आप से बेईमानी
1: जी
0: होगी। तो राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू अफसाने का एक

0: हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ किस तरह के और प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर होते रहेंगे।
1: तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
0: लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम को तर्तीब दिया था इंतजार सैफी ने। तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी, हम दोनों को यानी शाहनवाज हाशमी और
1: फरहीन इकबाल को दीजिए इजाजत।
0: खुदा
1: खुदा
0: हाफिज।
1: हाफिज।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल, और आज मेरे साथ हैं,
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, और मैं हूँ रीमा यादव।
0: और आज क्या है खास कार्यक्रम में, सबसे पहले ये नजर डाल लेते हैं एशियन गेम्स 2026 में आज के हुए मुकाबले और अब तक के हुए मुकाबलों के बारे में तो आपको हम बताएंगे ही, साथ ही साथ भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाने वाला दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच के बारे में भी बातचीत होगी। साथ ही साथ WPL रिटेंशन, कौन से खिलाड़ी रिटेन किया गया और कौन से खिलाड़ी जो है वो नहीं रखे गए, उनके बारे में भी आपको एक रिपोर्ट सुनवाएंगे। साथ ही साथ वुमेन्स इंडियन ओपन गोल्फ चैंपियनशिप शुरू होने वाली है 22 अक्टूबर से, उस पर भी खास बातचीत होगी। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक और सुनते रहिए कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

और अब बात करते हैं एशियन गेम्स 2026 में आज और अब तक हुए मुकाबलों के बारे में। जापान के आइची नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में आज खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया। निशानेबाजी में नीरू डांडा का स्वर्णिम निशाना, बॉक्सिंग में प्रवीण और अंकुश का फाइनल में प्रवेश और भारी वजन वर्ग में नरेंद्र का कांस्य। 5,000 मीटर में गुलवीर सिंह की पदक हैट्रिक और स्क्वाश और तीरंदाजी में शानदार जीत, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं शूटिंग से। महिलाओं के ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की नीरू डांडा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरू ने फाइनल में शानदार निशानेबाजी करते हुए 30 में से 28 निशाने सटीक लगाए और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का 5वां स्वर्ण पदक रहा और खास बात यह रही कि इस संस्करण में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण है। यानी जहां एक और भारतीय टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, वहीं नीरू डांडा ने व्यक्तिगत स्तर पर भी तिरंगा सबसे ऊपर पहुंचाया है। और शूटिंग में बात यही खत्म नहीं हुई। महिलाओं के ट्रैप टीम स्पर्धा में नीरू डांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया और इस तरह आज शूटिंग रेंज से भारत को एक स्वर्ण और एक रजत पदक मिला। पुरुषों की ट्रैप टीम स्पर्धा में भारत की शपथ भारद्वाज, कायनान चिनाई और अहवर रिजवी की टीमें छठे स्थान पर रही। शपथ भारद्वाज ने व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब बॉक्सिंग के रिंग की ओर चलते हैं और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में भारत की प्रवीण हुड्डा ने चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ प्रवीण ने अपना रजत पदक पक्का कर लिया और अब उनकी नजर स्वर्ण पदक पर है। पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में भारत को बड़ी सफलता मिली। अंकुश पंघाल ने उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। यानी बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दो फाइनलिस्ट सामने आए, प्रवीण और अंकुश। दोनों के पास अब स्वर्ण पदक जीतने का मौका है। हालांकि पुरुषों के 90 किलोग्राम के से अधिक वर्ग में भारत के नरेंद्र बरवाल को कजाकिस्तान के ऐबक के हाथों हार का सामना करना पड़ा। नरेंद्र सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने के कारण उनके नाम कांस्य पदक दर्ज हुआ। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत को एक कांस्य मिला, जबकि दो मुक्केबाजों ने फाइनल का टिकट कटाया। बात कर लेते हैं 5,000 मीटर दौड़ की। भारत की लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों के 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इस एशियन गेम्स में अपनी पदक संख्या 3 कर ली। गुलवीर के लिए यह कोई खास उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने प्रतियोगिता में इससे पहले भी पदक जीते थे और आज 5,000 मीटर में कांस्य के साथ उन्होंने पदक की हैट्रिक पूरी की। गुलवीर की यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। और अब तीरंदाजी की ओर चले तो पुरुषों के रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में धीरज बोमदेवरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले में जगह बनाई। वहीं नीरज चौहान ने भी अपने मुकाबले में जीत दर्ज की और आगे का रास्ता तय किया। दिन के दौरान धीरज ने फिलीपींस के गिरविन गार्सिया और चीनी ताइपे के चैंग सियोंग सुई को हराया और नीरज चौहान ने इंडोनेशिया के रियाग एगा अगाता के बाद दक्षिण कोरिया के किम जेडॉक को भी मात दी। रिकर्व तीरंदाजी

0: में भारतीय खिलाड़ियों की यह प्रगति आने वाली नॉकआउट मुकाबलों के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। और अब स्क्वाश के कोर्ट की ओर चलते हैं। महिला टीम स्क्वाश में भारत ने ईरान को 3-0 से हराया। भारतीय टीम की अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और तन्वी खन्ना ने अपने मुकाबले जीतकर भारत को शानदार टीम जीत दिलाई। 3-0 की इस जीत से भारतीय महिला टीम ने अगले दौर में अपनी जगह मजबूत की। और अब टेनिस की बात करें तो टेनिस कोर्ट से भी भारतीय प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। सुमित नागल ने दक्षिण कोरिया के हॉन्ग को हराकर पुरुष एकल के अगले दौर में प्रवेश किया। पुरुष युगल में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी ने भी नेपाल की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। यानी टेनिस में भी भारतीय चुनौती बरकरार है और आने वाले दौर में पदक की उम्मीदें बनी हुई हैं। ट्रैक साइकिलिंग और कैनो स्लालम की बात करते हैं। पुरुषों की टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में रोजित सिंह, डेविड बैकम और रोनाल्डो सिंह की भारतीय टीम 7वें स्थान पर रही। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में भारतीय टीम 6ठे स्थान पर रही। महिला टीम परस्यूट में भी भारतीय टीम ने हिस्सा लिया और 5वां स्थान हासिल किया। कैनो स्लालम में पुरुषों की कायक स्पर्धा में हितेश केवट 8वें और प्रद्युम्न सिंह राठौर 10वें स्थान पर रहे। महिलाओं में पल्लवी जगताप 7वें और रीना सेन 9वें स्थान पर रहीं। सर्फिंग और कुराश पर नजर डालें तो सर्फिंग में पुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फाइनल में भारत के किशोर कुमार अनबरासु को फिलीपींस के टॉबी के हाथों हार मिली और उनका अभियान समाप्त हो गया। कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम वर्ग में विपिन कुमार को दक्षिण कोरिया के यूएन होनुस से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन खेलों में जीत और हार दोनों होती हैं और भारतीय खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में भी अपना पूरा जोर लगाया। और क्रिकेट की बात करें तो एशियन गेम्स में लगातार बारिश ने क्रिकेट कार्यक्रम को प्रभावित किया। 29 सितंबर को श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश मलेशिया के पुरुष क्वार्टर फाइनल मुकाबले भी बारिश के कारण बिना गेंद फेंके रद्द हो गए। उच्च रैंकिंग के आधार पर श्रीलंका और बांग्लादेश को सेमीफाइनल जगह मिली और अब सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से और बांग्लादेश का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब एक नजर पदक तालिका पर अगर हम डालें तो अब तक भारत के कुल 48 पदक हो चुके हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। शूटिंग की रेंज से नीरज ढांडा का स्वर्णिम निशाना, महिला ट्रैप का टीम रजत, बॉक्सिंग में प्रवीण और अंकुश का फाइनल प्रवेश, नरेंद्र का कांस्य, 5,000 मीटर में गुलवीर की पदक हैट्रिक, स्क्वाश और तीरंदाजी में जीत और टेनिस में आगे बढ़ी भारतीय चुनौती, ये है आज का खेलों का एशियन गेम्स में लेखा जोखा। और खास बातचीत करी हमने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जी राजा रामन से। आइए जानते हैं वो क्या बताते हैं अभी तक के प्रदर्शन पर।
1: उम्मीद के अनुसार तो नहीं है, क्योंकि अगर आप निशानेबाजों की बात करें सबसे ज्यादा बात उन्हीं की होती है। पिछली बार 22 मेडल आए थे, अब के बार शायद खत्म होते हुए 15 मेडल भी नजर नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा निराशा जरूर हुआ है। लेकिन बहुत ज्यादा भी परेशान नहीं होना चाहिए खिलाड़ी को, फैन को, थोड़ा सा चिंतन जरूर करना चाहिए सबको। और अगर हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है तो क्यों हुआ है, ये वजह खोजनी होगी सबको। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, 4 अक्टूबर को एशियन गेम्स खत्म होंगे, उसके बाद करना है। हम बहुत जल्दी निशाना टांग देते हैं हमारे एथलीटों पे, थोड़ा सा सबर हम सबको दिखाना हो।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि कई जगह जहां उम्मीद थी पदकों की वहां नहीं आए, और कुछ खेल ऐसे भी होंगे, खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अचंभित भी किया होगा।
1: ऐसे खेल में बिल्कुल खुशी होती है। अगर कुछ खेल में मेडल आए हैं जहां पे उम्मीद नहीं था तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ खिलाड़ियों से उम्मीद कम थी वो उनका पदक आ गया तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या हम चाइना के करीब पहुंचे हैं। अगर हमारा देश चाहता है कि हम दुनिया के टॉप 10 देशों में हो ओलंपिक खेलों में, या फिर टॉप 5 की भी बात करते हैं हम कभी कभी, अगर इतना बड़ा हमारा लक्ष्य है, क्या हम उस रास्ते पे सही चल रहे हैं, ये सोचना होगा हम सबको। लेकिन आज के अभी तक का जो एविडेंस है उसमें हम शायद थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, थोड़ा सा स्लिप हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, 2036 ओलंपिक गेम्स की हम बात करते हैं, 2032 की अगर बात करते हैं, तो उसकी तैयारी जरूर हो सकती है और फिर हम अच्छा प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं। अगर हम इस एशियन गेम से सबक लेते हैं, 2028 वाले गेम में और 2032 वाले गेम में, ओलंपिक गेम में प्रदर्शन सही होगा और 2036 के लिए हमारी तैयारी और सही हो सकती है।
0: सर आपने भी कहा कि हाँ हम पिछड़ चुके हैं पिछले हांगझो गेम से, अब के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो सर क्या वजह लगती है आप?
1: बहुत सारी वजह

0: सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कई हमारे खिलाड़ियों पे हमने दबाव डाला है, लगातार वो खेलते आए हैं। मन को और शरीर को फ्रेश रखना होता है ऐसे कॉम्पिटिशन से पहले, शायद उतने फ्रेश नहीं थे जितने होने चाहिए। बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेलते आएंगे तो थकान जरूर होगी, ये इसका एहसास शायद खिलाड़ी को नहीं होगा, इसका एहसास शायद प्रशिक्षक को नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी देश जब आगे बढ़े हैं, हम वहीं के वहीं रह गए। थोड़ा सा और हमको सुधार लाना चाहिए हमारे सिलेक्शन सिस्टम में, और एथलीट के मन को और एथलीट के शरीर को फ्रेश रखना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो अच्छे नतीजे और जरूर आएंगे।
1: और अब एक नज़र डाल लेते हैं एक नेशनल रिकॉर्ड अलर्ट पर, जो मेंस पोल वॉल्ट में देव मीना ने सेट किया है। 5.50 मीटर के मार्क तक उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जो 5.46 मीटर का था, और अब उनका नेशनल रिकॉर्ड है 5.50 मीटर का। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे होने वाले मुकाबलों पर नज़र डालते हैं। और कल से गोल्फ के मुकाबले भी शुरू हो रहे हैं और गोल्फ में भी शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी अब तक करते आए हैं। और क्या उम्मीदें हैं गोल्फ से, ये हमने जाना जनरल सेक्रेटरी चंपिका सयाल से। एशियन गेम्स में क्या उम्मीदें हैं गोल्फ के खिलाड़ियों से, आइए सुनते हैं।
2: तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, मेरे को लगता है विमेन टीम है जिसमें अदिति अशोक, वो तो LPGA प्लेयर है, तो दैट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर यू नो प्लेइंग। और दो बाकी जो हमारे प्लेयर हैं दीक्षा दागर और प्रणवी उर्ज, वो दोनों यूरोपियन टूर में खेलते हैं। हमारे महिलाएं की टीम है, इससे बेहतर कभी हुई नहीं है, इट्स द बेस्ट टीम पॉसिबल दैट हैज गॉन टू एशियन गेम। सो मैं ड्रॉ देख रही थी, मैंने देखा है कि हमारे प्लेयर्स पहले ही में कोरिया और चाइनीज टाइपे के साथ ड्रॉ हुआ उनका। सो देखो अब लोकल हालात डिपेंड करते हैं, थोड़ा सा एडवांटेज होम साइड को होता है ना जैपनीज प्लेयर्स को है। सो बाकी वहाँ पे जो प्लेइंग कंडीशन है, आपको पता है ये आउटडोर गेम है, तो आई थिंक प्लेइंग कंडीशन बहुत ही देखने पड़ेंगे नेक्स्ट 4 डेज क्या निकलेगा। पर आपको पता है कि अदिति अशोक ने गोल्ड छोड़ते छोड़ते पिछले साल 2022 में शी गॉट सिल्वर मेडल, सो उसके भी अंदर से यू नो इच्छा तो ज़रूर होगी कि वो गोल्ड लेके आए। और बाकी टीम का हम तो चाहते हैं कि वो पोडियम फिनिश करें।
1: और अब बात कर लेते हैं भारतीय पहलवान जो मैट पर उतरने को तैयार है, यानी कि कुश्ती की। इस बार फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन तीनों वर्गों में मुकाबले होंगे। पदकों की संख्या के लिहाज से कुश्ती एशियन गेम्स में भारत का तीसरा सबसे सफल गेम है। और हांगझोउ 2022 की बात करें, यानी कि पिछले एशियन गेम्स की बात करें, तो 6 पदक आए थे कुश्ती में, जिसमें दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था, जबकि अमन सरावत, अंतिम पंघाल, सोनम मलिक, किरण और सुनील कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किए। यानी पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 6 पदक जीते और नागोया में इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। महिला कुश्ती पर नजर डालते हैं तो इस बार नई पीढ़ी पर नजर होगी। 50 किलोग्राम भार वर्ग में दीपांशी, 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम पंघाल, 57 किलोग्राम भार वर्ग में मनीषा भानवाला, 62 किलोग्राम में मानसी अहलावत, 68 किलोग्राम में निशा दहिया और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक चुनौती पेश करेंगी। महिला कुश्ती में भारत की विरासत अब काफ़ी मजबूत हो चुकी है। 2018 में विनेश फोगाट ने इतिहास रचा था और 2022 में अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीतकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और अब अंतिम एक बार फिर 53 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। इस बार 50 किलोग्राम में दीपांशी के सामने जापान की यूई सुसाकी जैसी बड़ी चुनौती मौजूद है, जबकि 57 किलोग्राम में जापान की विश्व चैंपियन अकारी भी मैदान में है। यानी भारतीय पहलवानों को शुरुआत से ही एशिया की शीर्ष खिलाड़ियों से मुकाबला करना होगा। पुरुष फ्री स्टाइल की बात करें तो 57 किलोग्राम में अमन सरावत, 63 में सुजीत कलकल, 74 में सागर जगलान, 97 में दीपक पुनिया, 125 में रजत रूहल। अमन सहरावत के नाम पहले ही ओलंपिक पदक है, पेरिस 2024 में उन्होंने 57 किलोग्राम में कांस्य जीता था। और 65 किलोग्राम में सुजीत कलकल भारतीय चुनौती में प्रमुख नामों में है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इन्हें एशियाई चैंपियन और 2026 एशियन गेम्स में प्रमुख पहलवानों में शामिल किया है। 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया का अनुभव महत्वपूर्ण रहेगा और अब वे इसकी चुनौती स्वीकार करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो 86 किलोग्राम भार

संभाले हुए हैं, उनकी ठीक और सही जानकारी हर एक राज्य किसान को जानकारी देना और उस हिसाब से उस स्तर की मापदंड की फसलों का उत्पादन, फलों और सब्जियों का उत्पादन वो करना एक्सपोर्ट क्वालिटी का, उसके लिए भी किसानों में खेत बचाओ अभियान के तहत एक जागरण का अभियान चलाया जाएगा। राज्यों के साथ हमने एफसीए के जो लाभ हो सकते हैं भारत के किसानों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए प्राकृतिक

0: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 पर यह रेडियो रिपोर्ट। स्वर एवं संकलन मंजीत कौर, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर, संयोजक शिवनंदन लाल।
1: तो वीरेन भाई, अभी हम सुन रहे थे 28 और 29 सितंबर को पूसा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 पर एक रेडियो रिपोर्ट।
2: जी, और साथियों, सेवा से संकल्प एक ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, एक ऐसी महाअवधि है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवा समर्पण और विकास को समर्पित ये माह समाज में सेवा भाव को बढ़ावा दे रहा है। और सेवा चाहे कोई भी हो कुसुम बहन, उससे आनंद ही आता है और भलाई ही होती है। और हम एक ऐसे गांव की बात बताने वाले हैं, मतलब ऐसे गांव नहीं, ऐसे तो बहुत सारे गांव हैं, जीवंत गांव कार्यक्रम की बात करने वाले हैं,
1: यानी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जीवंत गांव कार्यक्रम। भारत सरकार की एक राजनीतिक सीमा विकास योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांवों को बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़कर उन्हें खुशहाल और मजबूत बनाना है। यानी सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत इस योजना को विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है, जिसका संदेश है सीमा पर बसे गांव देश के आखिरी नहीं बल्कि पहले गांव हैं।
2: जी, कहीं से तो शुरुआत होती है कुसुम, उधर से देखेंगे तो पहले हैं और इधर से जाएंगे तो भी हमारे लिए पहले ही हैं।
1: बिल्कुल। तो और वीरेन भाई, आज विश्व हृदय दिवस भी है।
2: क्या बात कर रही हो
1: जी,
2: दिल संभाल लूं।
1: हाँ बिल्कुल, और हम सभी को अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है।
2: जी, तभी तो किसी ने कहा है कि दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम क्या सावधानियां रख सकते हैं ये तो एक विशेषज्ञ ही बता सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो वीरेंद्र भाई, सुनवाते हैं अपने साथियों को युवा ये बातचीत। युवाओं में बदलता बढ़ता हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज पंडित, इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो आइए सुनते हैं।
3: चाहता है कि वो स्वस्थ रहे लेकिन फिर भी किसी न किसी बीमारी से उसका सामना हो ही जाता है, और आजकल नई नई बीमारी आ जाती हैं जिसका पता भी नहीं चलता। और अभी तक सुनने में आता था कि ये काफ़ी पुराने लोगों को होती है, लेकिन आज हमारे जो युवा साथी हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं में आती है, हृदय संबंधी। ग्रामीण युवाओं में हृदय संबंधी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नीरज पंडित जी को। डॉक्टर नीरज पंडित जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो युवाओं में जो हृदय रोग की समस्या है, वो डॉक्टर साहब, उसका लोग कैसे जाने कि ये हृदय रोग की समस्या है?
4: युवाओं में हृदय रोग दो प्रकार से हो सकता है, एक तो जन्मजात हृदय रोग की बीमारी हो
3: जी,
4: या दूसरा रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो वाल्व की बीमारियां होती हैं, हृदय रोग, हृदय के अंदर जो वाल्व होते हैं उनकी रुकावट, सिकुड़न वगैरह, जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। और तीसरी जो हृदय रोग आजकल जो ज्यादा देखा जा रहा है युवाओं में, ग्रामीण युवाओं में भी, वो है हार्ट की, दिल की नसों में रुकावट बन जाना, जिससे हृदय घात या हार्ट अटैक, इस प्रकार की संभावना अधिक होती है। और हाई ब्लड प्रेशर, जो कि एक, जिसको हाई बीपी बोलते हैं कॉमन आम भाषा में, वो एक प्रकार की, उससे मालूम नहीं पड़ता, पर जब वो अगर कंट्रोल ना हो तो धीरे धीरे तो और सारे शरीर के अंगों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है।
3: तो डॉक्टर साहब, ये जो हृदय की बीमारियां होती हैं, कि ये इसके कारण क्या क्या रहते हैं?
4: जो नसों की रुकावट होती है, और हार्ट की नसों की रुकावट, हृदय आपको मालूम है खून पंप करता है, पूरे शरीर में संचार करता है, पर उसको खुद को काम करने के लिए नसों से खून की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। 2 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे शरीर की नसों में चर्बी का जमाव शुरू हो जाता है, और वो जाके बाहर सामने आता है 40 वर्ष और उसके अधिक उम्र में। पर जो लोग बहुत कम व्यायाम करते हैं और बहुत ज्यादा तला और इस प्रकार खान पान का ध्यान नहीं रखते और धूम्रपान वगैरह करते हैं, तो उनमें ये हृदय रोग कम उम्र में सामने आ सकता है। इसलिए इसके मुख्य कारण तो कहेंगे कि जिनके अंदर संभावना है हृदय रोग की, परिवार में किसी और को हृदय रोग हो चुका है और उनके अंदर ये हार्ट अटैक होने के रिस्क भी हैं, जैसे कि धूम्रपान करना, शुगर की बीमारी होना, व्यायाम नहीं करना, मोटापा होना, उनमें हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, और वो भी कम उम्र में।
3: जी, अगर डॉक्टर साहब किसी को होता है तो वो कैसे पहचान

0: लगता है कि उसको हृदय संबंधी परेशानी है।
1: सबसे पहले तो यह है कि अगर परिवार में किसी को हृदय रोग है तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर संभावना औरों से अधिक है। और अगर किसी को ऐसे पारिवारिक ऐसा हिस्ट्री नहीं है हार्ट डिजीज की, तो 35-40 वर्ष की उम्र के बाद एक बार उनको अपना सब जांच कराना चाहिए, जिसमें आता है खून की जांच, शुगर है क्या, कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार है, ब्लड प्रेशर ज्यादा तो नहीं है। अगर किसी को हृदय रोग हो जाता है, हार्ट की नस की रुकावटें हो जाती हैं, तो उसके लक्षण होते हैं कि कामकाज करने में, परिश्रम करने में छाती पे भारीपन आता है, और अगर वो रुक जाएं, आराम करें, तो वो ठीक हो जाता है, कुछ मिनट के लिए रहता है। इसको हम एंजाइना कहते हैं। ये नस की रुकावट के कारण होता है, जब जरूरत ज्यादा होती है खून के प्रवाह की हार्ट को, तब तो वो हो नहीं पाता क्योंकि वो रुकावट है। और
0: जी
1: जब वो रुक जाते हैं, आराम करते हैं, तो धड़कन कम हो जाती है और वो रुकावट के अंदर भी जो सप्लाई हो रहा है खून का, उससे उनका काम चल जाता है। यही रुकावट धीरे धीरे अगर बढ़ती जाती है और वो हार्ट की नस को टोटल बंद कर देती है, तो वो हार्ट अटैक में परिवर्तित हो जाता है, जिसके लक्षण है कि बहुत वही दर्द बहुत तेज होता है लेफ्ट साइड में, और वो बांह में भी निकलता है। साथ में मरीज को घुटन, पसीना, कमजोरी, उल्टी, इस प्रकार के लक्षण, सांस फूलना, बेहोशी भी आ सकती है। और वो मरीज को मालूम पड़ता है कि ये कोई एक बहुत सीरियस सी बात है, ये आमतौर पे पहले कभी ऐसा उनको महसूस नहीं हुआ।
0: डॉक्टर साहब, अगर किसी को जो आपने लक्षण बताए ये प्रतीत होते हैं तो उस स्थिति में तुरंत उसे क्या करना चाहिए?
1: अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो शुरू के 3 घंटे बहुत ही उनको गोल्डन पीरियड कहते हैं, सुनहरी क्षण है। उनको अगर हम जितना समय वेस्ट करेंगे उतना ही हार्ट के मसल को डैमेज करते जाएंगे। तो अगर दूर दराज के इलाके में रहते हैं, अब बड़ा अस्पताल नज़दीक नहीं है, तो कोई भी नज़दीकी अस्पताल में जा करके एक खून को पतला करने की दवा होती है, ये जैसे एस्पिरिन होती है जो दर्द की दवा भी है,
0: जी
1: वो ले सकते हैं अगर घर में ही कहीं उपलब्ध हो, किसी और को कोई हृदय रोग का मरीज हो। नहीं तो नज़दीकी अस्पताल में जाएं और वहां पे डॉक्टर की सलाह लें, और ECG करना पहला कदम है। और ECG करके अगर उसमें दिखता है कि हार्ट अटैक है, तो खून के छक्के को घोलने की दवा तुरंत देनी चाहिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में मिल सकती है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे बड़े अस्पताल में जहां पे तार जांच या एंजियोग्राफी करने की सुविधा हो, वहां पे पहुंचना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, कोई ऐसी भी स्थिति होती है कि तुरंत अस्पताल नहीं जा सकता और मरीज को पता नहीं है कि उसको अटैक आया हुआ है, तो दूसरे जो परिवार के लोग हैं उस स्थिति में वो क्या कर सकते?
1: उनको ये सीधा बड़े शहर में, बड़े अस्पताल में आने में और समय उसमें आने में नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, पर एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। हार्ट अटैक का घर पे इलाज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। तो बेहतर हो कि जो भी सीने में दर्द हो रहा है, उसको एक बार डॉक्टर की सलाह से ECG के द्वारा ये रूल आउट करवा लें कि हार्ट अटैक है कि नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, घर पे इलाज की बात नहीं है, बात यह है कि घर से अस्पताल तक जाने में समय लगता है, उस बीच क्या वो उसका कुछ कर सकते हैं?
1: उस बीच जो एस्पिरिन नाम की दवा है, जो सिर दर्द की दवा, या वो भले ही अगर घर में उपलब्ध हो तो दे सकते हैं। और ऐसे और कुछ हार्ट अटैक के लिए घर पे कोई घरेलू नुस्खा इस प्रकार नहीं है।
0: और डॉक्टर साहब, एक और दूसरी आपने जो बीमारी बताई हृदय से संबंधित जो जन्मजात होती है वो क्या होती है?
1: जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि कोई नवजात शिशु नीला, ब्लू बेबी, उसके नाखून और जीभ वगैरह नीले थे, क्योंकि गंदा खून और साफ खून जन्म से ही आपस में मिल रहे हैं।
0: जी
1: जैसे हार्ट में कोई, हृदय में कोई छेद होते हैं, कोई दो राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट के चेम्बर के आपस में बीच में छेद है, जन्मजात बनावट में खराबी है, तो वो नीले होके पैदा होते हैं, सांस में दिक्कत आती है। और कुछ होते हैं जो ऐसे नीले नहीं होते, पर उनको साफ खून और गंदा खून आपस में मिलता है, और इस कारण से उनको सांस फूलता है, और बच्चे जो हैं माँ का दूध नहीं पी पाते, उनका दूध पीने में सांस फूलने लगता है। बार बार उनको इन्फेक्शन होता है छाती में, निमोनिया की शिकायत हो जाती है। तो जब वो डॉक्टर की नज़र में आते हैं, तो डॉक्टर बता सकते हैं कि इनको जन्मजात हृदय का रोग है या नहीं, और अगर है तो उसका आगे क्या इलाज करना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, उसका इलाज संभव है पूरा?
1: बिल्कुल संभव है, पर वो निर्भर करता है, कई हृदय में जो छेद होते हैं वो स्कूल जाने की आयु तक, यानी कि लगभग 5 वर्ष तक बंद हो सकते हैं अपने आप से। कुछ जो बंद नहीं होते उनको ऑपरेशन द्वारा, और आजकल तो बिना ऑपरेशन के हम लोग छतरी द्वारा एक इलाज करते हैं। एक प्रकार की छतरी बनी आती है जो कि बिना ऑपरेशन के हम छेद पे लगा देते हैं।

0: कि बंद हो जाता है और फिर वो बच्चा नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करता है।
1: अच्छा, एक बार बच्चे का जो छिद्र वगैरह होता है वो बंद होने के बाद फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आती
0: फिर
1: है?
0: दिक्कत नहीं आती, पर उसको डॉक्टर को फिर भी 6 महीने 4 महीने में दिखाना जरूरी है, कि ये नहीं कि वो बिल्कुल ही ना दिखाए और फिर कोई और कुछ प्रॉब्लम आने लगे तो बाद में बहुत बिगड़ने के बाद पहुंचे।
1: डॉक्टर साहब, हम तो यही चाहते हैं कि किसी को हृदय संबंधी बीमारी ना हो, तो उसके बचाव के लिए सभी को क्या करना चाहिए?
0: दूसरा एक और, इससे पहले मैं एक और ये कहना चाहूंगा कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो रूमेटिक हृदय रोग, बहुत ही एक हमारे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अभी भी है,
1: जी
0: जो कि गला खराब होने पे जो कीटाणु गला खराब करते हैं वो कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में कम उम्र में 15 वर्ष की आयु तक वो जोड़ों को असर करता है, बड़े जोड़ जो शरीर के हैं
1: जी
0: उसको बोलते हैं रूमेटिक डिजीज। उसका एक असर हार्ट के ऊपर भी पड़ता है और हार्ट के वाल्व सिकुड़ जाते हैं, जो कि मरीज को उसका ऑपरेशन द्वारा या बैलून द्वारा वो वाल्व खोलना पड़ता है। ये रूमेटिक की बीमारी जो कि इन्फेक्शन के कारण, कीटाणुओं के गला खराब होने के, हमारे गला खराब होने के कारण होती है, जबकि स्कूल में बच्चे जाते हैं या भीड़ में बच्चे रहते हैं या बहुत ही कंजेशन होता है उसमें ये होने की संभावना अधिक है। इन सब बीमारियों के बचाव, जो आपका प्रश्न था,
1: जी
0: ये उसके लिए ये है कि हम अपने खान पान और रहन सहन को सही रखें और आज के भागदौड़ के जीवन में मानसिक तनाव को कम रखें। और वो किस प्रकार कम रखें? योगासन करके, मेडिटेशन करके, और अपनी जो भी आपकी हॉबी हैं, जो भी आप आपको जो शौक है, जो अच्छा लगता है, खेल कूद, उन सब में ध्यान लगाएं, ना कि केवल बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और वजन बढ़ता जा रहा है, व्यायाम नहीं कर रहे, और ये जो धूम्रपान करना और ये शुगर वगैरह अगर की चीज़ें, जंक फूड जिनको कहते हैं, जैसे बर्गर पिज्ज़ा और इस प्रकार की चीज़ें हैं, या कोल्ड ड्रिंक आते हैं, इन सबको, ये सबसे मोटापा बढ़ता है और कोई शरीर स्वस्थ नहीं रहता। तो ये तो एक तो जीवन शैली को बदलें, जिसमें आता है कि तरह तरह के अनाज खाएं, उनकी
1: जी
0: मिश्रित आटे को बना के रोटियां खाएं, तरह तरह की सब्जियां, मौसम की, रंग की, विभिन्न रंगों की, गाजर मटर टमाटर जो भी हैं, विभिन्न सब्जियों को दिन में 2 या 3 बार तो प्रयोग करें, कम से कम 200 ग्राम 250 ग्राम की हेल्पिंग होनी चाहिए एक उसमें 2-3 बार, और मौसम के फल खाना भी बेहतर है। इस प्रकार जो मलाई युक्त और तला हुआ और ये इनको घी वगैरह का कम प्रयोग करना बेहतर है, खासकर जो वनस्पति घी है जो जम जाता है उसमें एक तत्व होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रांस फैटी एसिड,
1: जी
0: ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये हार्ट की बीमारी और तरह की बीमारियां करते हैं। तो दोबारा तला हुआ और वनस्पति घी में तला हुआ, जो हमारे मिठाई और नमकीन और ये सब बनाते हैं पूरियां, दोबारा तला हुआ, बार बार तला हुआ, उसका प्रयोग करना बहुत ही खतरनाक।
1: जी डॉक्टर साहब, हम तो यही कहेंगे कि हमारे युवा साथी और जो भी ग्रामीण भाई हैं, किसी बीमारी से पहले बचाव जरूरी है, और अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो निश्चित तौर पे अपने पास के अस्पताल में जाएं और विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं और जल्दी से जल्दी उसका इलाज करा लें। अपनी जो दिनचर्या है उसको बदलें, योगा करें, दौड़ लगाएं और खान पान का सही ध्यान रखें, तो निश्चित तौर पे आप हृदय संबंधी बीमारी से दूर रहेंगे। डॉक्टर नीरज पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और युवाओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे युवाओं में बढ़ता हृदय रोग, इस विषय पर ये बातचीत। विशेष विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज पंडित। और इसी के साथ आज का ये ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी सुनने वाले साथियों को
3: राम
2: राम।
3: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही पलों में अब हिंदी में समाचार होंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा

0: दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। इतना कि तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 7:05 और 15 सेकंड। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। अमित, जब भी हम अपने अन्नदाताओं यानी किसान भाई बहनों की बात करते हैं तो मन गर्व से भर जाता है। हमारे किसानों की मेहनत, लगन और नई नई जानकारियों के साथ अब अधिक गुणवत्तापूर्ण और कृषि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर खेतीबाड़ी का कार्य पूर्ण समर्पण के साथ हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं।
4: बिल्कुल आपने सही कहा, कार्यक्रम किसान वाणी का उद्देश्य भी प्रतिमा यही है कि जो हमारे भाई बहन खेतीबाड़ी कर रहे हैं उसमें वैज्ञानिक सोच हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचे, उसका खेती खलिहानी में उपयोग करें, अच्छा उत्पादन लें और देश की इस आर्थिक रीढ़ को मजबूत करें। और हमारी कोशिश होती है कि जो किसान के लिए हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे, और ऐसी ही बातचीत हम अपने कार्यक्रम में साझा करते हैं किसान भाई बहनों के लिए।
3: तो आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर।
4: देश के युवाओं और हमारे किसान भाई बहनों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन सरकार की एक नई दिशा है, नई दृष्टि है, नई सोच है। भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जिससे निरंतर हमारे देश के युवा बढ़ रहे हैं और बागवानी का उत्पादन बढ़ रहा है।
3: जी, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य देश में बागवानी क्षेत्र, फल, सब्जियां, फूल, मसाले, सुगंधित एवं औषधीय पौधों आदि का समग्र और टिकाऊ विकास करना है। वर्तमान में ये व्यापक रूप से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत संचालित होता है।
4: बिल्कुल प्रतिमा, और जो हमारे देश के युवा किसान भाई बहन राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए चाहे पौधों की नर्सरी तैयार करने की बात हो, नए बगीचे लगाने हो, संरक्षित खेती हो, सिंचाई के उपकरण हो, इसके लिए हमारी सरकार वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी प्रदान करती है।
3: और साथ ही मिशन के प्रमुख उद्देश्यों की हम बात करें तो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है, नए फल एवं सब्जी बागानों की स्थापना को बढ़ावा देना भी है।
4: तो भाई हम क्यों पीछे रहें, केवल आवश्यकता है जागरूकता की। मित्रों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का हम हिस्सा बने, सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ लें और निश्चित रूप से अपनी भागीदारी सिद्ध करें।
3: बिल्कुल सही है का, और किसान के लिए इसका महत्व बागवानी फसलों में अच्छी तकनीक, गुणवत्तापूर्ण पौध, सिंचाई और कटाई के बाद उचित प्रबंधन अपनाने से भी है।
4: और भाई इसकी अधिक जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों से भी मिल सकती है।
3: बिल्कुल अमित, और देखिए हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सभी यही चाहते हैं कि हर मिशन के द्वारा किसान भाइयों को लाभ पहुंचे।
4: तो साथियों, इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक ऐसी बातचीत का, ऐसी जानकारी का जो हमारे किसान भाई बहनों के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
5: किसान बहन भाइयों, राम राम। किसान बहन भाई, अमरूद की बागवान की शुरुआत कैसे करें, या हमारे जिन किसान बहन भाइयों के पहले से ही अमरूद के बाग लगा रखे हैं, तो कौन कौन सी समसामयिक कृषि क्रियाएं करें ताकि उनको आने वाले समय में अच्छा फसल उत्पादन मिले, तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्कार।
6: सभी किसान भाइयों को राम राम।
5: डॉक्टर साहब, अमरूद है काफी लोकप्रिय फल माना जाता है, तो क्या वजह है, क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं?
6: देखिए, अमरूद की लोकप्रियता के पीछे कोई एक वजह नहीं है
5: जी।
6: एक ऐसा ये बहुआयामी और इसमें इतने सारे औषधीय गुण हैं कि अमरूद अब फलों की जगह ना एक औषधीय फल की तरह प्रचलित हो रहा है। इसके पीछे कुछ मूल कारण है। एक तो आप अपनी जीवन शैली देखिएगा, हमारी जीवन शैली में, भोजन पद्धति में इतना बदलाव आया है कि हम पेट संबंधी विकारों से बहुत ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, और अमरूद एक ऐसी रामबाण औषधि है कि जो पेट संबंधी विकारों के लिए एक ऐसा फल है जो कि आसानी से उपलब्ध है,

0: बहुत ज़्यादा महंगा फल नहीं है। इसकी जो जलवायु है इसकी खेती के लिए देश के 25 राज्यों में अमरूद का कमर्शियल उत्पादन हो रहा है। इसके साथ साथ 150 से ऊपर इसकी प्रजातियां हैं। अमरूद को हम सघन बागवानी में लगा सकते हैं। अमरूद की जो फलन शुरू हो जाता है वो तीसरे साल से इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाता है। अमरूद खाने से आपकी विटामिन सी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, मतलब जो अमरूद में विटामिन सी उपलब्ध है वो आप सोचेंगे कि सिट्रस वर्गीय फलों से भी ज्यादा है, यानी हमारे संतरे से ज्यादा विटामिन सी अमरूद में उपलब्ध है। अमरूद में फाइबर होता है 5 से 6%, तो जो हमारे गट के बैक्टीरिया हैं उसके लिए हमें फाइबर बहुत अच्छे से चाहिए होता है, तो हमें अमरूद के जो मिनरल्स अमरूद में उपलब्ध हैं, तो आप सोचिए कि 150 के ऊपर ऐसी बीमारियां एक प्रकार से चिन्हित की गई हैं जिसमें कि अगर अमरूद का सेवन करें तो उनका निदान या उनका रोकथाम संभव है। सो एक तरफ तो मानव के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर इसका औषधीय बहुत अच्छा है, और दूसरी बात रही किसानों की, तो जब किसान भाइयों ने देखा कि अमरूद की डिमांड बढ़ रही है तो इसलिए इसका अमरूद का दिन पर दिन रकबा बढ़ने लगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 20 सालों में अमरूद का पूरे देश में जो टोटल रकबा है वो 4 गुना बढ़ चुका है। सो इसमें 4 गुना रकबा बढ़ चुका है और 5 गुना इसका उत्पादन भी बढ़ चुका है, इसलिए क्योंकि इसकी जल्दी से आय शुरू हो जाती है, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, और इसकी हम क्योंकि साल में 2 बार फलन आता है तो किसान भाइयों को एक अच्छी हैंडसम इनकम इससे प्राप्त होती है।
1: बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने बताई है कि कितना गुणकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ आमदनी के तौर पर देखें तो हमारे किसान भाइयों के लिए भी बड़ा लाभकारी है। अब बात आती है कि जो भी हमारे किसान बहन भाई अमरूद के बाग लगाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो शुरुआत करें? पहले तो खेत के चयन की बात आती है कि किस तरह से उनको कहाँ पे लगाना चाहिए।
0: सबसे पहले तो जो भी किसान भाई सुन रहे हो इसको कि अब अमरूद के अगर आपको बाग लगाने हैं तो खरीफ की फसल कटने के बाद में अब ये बाग लगाए जाएंगे फरवरी में, या फिर अगर आप रबी की फसल भी लेना चाहें तो अप्रैल के महीने के बाद आप खेत की तैयारी से शुरुआत करें। अप्रैल के महीने के बाद आप ऐसे खेत का चयन करें जिसमें कि पानी नहीं भरता हो। मेरे किसान भाई बड़े गौर से इस बात को जाने कि अमरूद में अगर आप ऐसे खेत का चयन करते हैं जिसमें पानी भरता है तो उकठा संबंधी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमें कैसे खेतों का चुनाव करना है जिसमें बलुई दोमट मिट्टी हो या जो भी आपके क्षेत्र की मिट्टी हो उसमें पानी नहीं भरता हो। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि अमरूद की प्रजातियों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। आप सोचें कि पूसा संस्थान से विकसित पूसा आरुषि और पूसा प्रतीक्षा का एक भी पौधा इस समय बचा नहीं है। सो किसान भाइयों को पहले से ही निर्धारित करना है कि वो जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से एक्रेडिटेड नर्सरी या अपना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको राज्य की कृषि विश्वविद्यालय कहते हैं या कोई केंद्र की पोषित कोई परियोजना से जो नर्सरी चल रही है उनमें हम पहले से ही संपर्क करें। मैं कुछ प्रजातियों के नाम ले रहा हूँ, उन प्रजातियों की बहुत अच्छा उत्पादन भी है, उसके साथ साथ उनकी प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता भी ज्यादा है। जैसे हम पूसा आरुषि, पूसा प्रतीक्षा, हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, ललित, श्वेता, धवल, ये कुछ उत्तर भारत के लिए उपलब्ध प्रजातियां हैं जिनकी अधिक मात्रा में उपलब्धता भी रहती है। और अगर आप पहले से बुकिंग कर देंगे, जैसे कि अभी ही किसी ने मन बनाया कि हमको अगले साल से अमरूद की बागवानी में जाना है, तो आप अभी से ही इन संस्थानों के पास में अपनी बुकिंग पहले से कर दें जिससे कि आपको पौधों की उपलब्धता हो जाएगी। एक हो गया स्थल का चुनाव, दूसरा हो गया प्रजाति का चयन, तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि किसान भाइयों को कितनी दूरी पे पौधे को लगाना है। और पौधा लगाने के पहले हमें अप्रैल के महीने में गड्ढा खोद लेना है 1x1x1 मीटर या कम से कम 75 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर। इनको 3x3 मीटर या 4x4 मीटर की दूरी पे आपको अच्छे से इन गड्ढों को खोद के सूरज की रोशनी से अच्छे से सिक जाएं वो गड्ढे, तो जितने भी फंगस होते हैं या जो ऐसे कीट होते हैं उनका सोलराइजेशन बड़े अच्छे से हो जाता है। उसके बाद किसान भाइयों को क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद, उसके साथ साथ आपको उसमें थोड़ा सा अगर आपके पास में उपलब्धता हो सके तो बर्मी कंपोस्ट भी साथ में उसमें मिक्स करके, और जो नीचे वाली मिट्टी है उसको ऊपर करना है, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करना है। क्या होता है, ऊपर की जो मिट्टी होती है बहुत प्रोडक्टिव होती है, और जब जड़ें जाती हैं जड़ें नीचे जाती हैं, तो हमने ऊपर का पोषण तो हम कर ही रहे हैं बाहर के सोर्स से, सड़ी हुई गोबर की खाद से, बर्मी कंपोस्ट से, नीचे भी हमारे पास में जो ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी है वो नीचे चली जाती है। एक तो आपके अंदर कोई पत्थर है, कोई कचरा है या कोई ऐसी फंगस है या कुछ ऐसे रोग कीट, वो खत्म हो जाते हैं, और हमारा पूरे पोषण की साल भर की उसकी व्यवस्था भी उस गड्ढे से कर देते हैं। तीसरा, 15 जुलाई के बाद में जब 1-2 पानी गिर जाए उसके बाद में दोपहर के बाद पौधारोपण करेंगे तो इसमें पौधों के सर्वाइवल के चांसेस 90% के ऊपर रहते हैं। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना है। अमरूद में एक नियम है कि अमरूद में नई प्ररोहों पर, नए कलनों पर फलन आता है। तो अगर किसान भाई अपने पौधे का आकार, पौधे का विन्यास ठीक से रखेंगे तो हर साल जब वो प्रूनिंग करेंगे तो उनको रेगुलर फसल मिलती रहेगी, उनका पोषण कम लगेगा और पोषित फल उनको मिलते रहेंगे।
1: बिल्कुल, तो ये तो आपने बताया किस तरह से हमारे किसान भाई जो नए बाग हैं वो लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब,

0: कोई भी किसान भाई कोई फसल लगाते हैं तो अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं, तो क्या बाग लगाने के लिए भी मिट्टी की जांच करवाना जरूरी होता है?
1: देखिए ये ऐसे ही है जैसे कि हमें बुखार आया तो हमारा डॉक्टर बोलता है कि एक बार अपन ब्लड टेस्ट करा लें, उससे क्या पता चलता है कि हमारे अंदर के स्वास्थ्य के पैरामीटर कैसे हैं। तो मिट्टी लाइव है, मिट्टी जीवित है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता है, वो हमें जानकारी हो तो हम आगे हमारे पौधों को क्या देना है उसका बहुत अच्छे से हम एक मूल्यांकन कर सकते हैं। मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है और मिट्टी की सैंपलिंग का तरीका, किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने जो सबसे पास में जो सबसे अच्छा एक जानकारी का स्रोत होता है वो होता है कृषि विज्ञान केंद्र, और मृदा की जांच के बाद में उसके हिसाब से, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसको हम नेचुरल फार्मिंग में बहुत अच्छे से उगा सकते हैं, तो किसान भाइयों को इसके रेट भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर हम बोलेंगे कि हम नेचुरल फार्मिंग से ग्रो करके उत्पादन करके इस अमरूद का उत्पादन कर रहे हैं तो रेट भी अच्छा होगा और उसका स्वाद भी अच्छा होगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होगी।
0: सब आपने बताया किस तरह से बाग लगाना है, फिर मिट्टी की जांच क्यों करवानी चाहिए। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी लागत कम हो, फायदा ज्यादा हो। तो जब नर्सरी लग जाती है अमरूद की, तो फल 3 वर्ष के बाद उनको मिलता है, तो एक 3 साल का गैप भी रहता है, तो उस दौरान वो कौन कौन सी फसल कर सकते हैं साथ में, ताकि उनको फायदा भी हो और जो अमरूद की फसल है उसको भी कोई नुकसान ना हो?
1: देखिए उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ अमरूद का उत्पादन होता है वहाँ वहाँ फूलों की भी खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। अमरूद के अंदर कभी कभी निमेटोड की समस्या आती है और निमेटोड के लिए हम लोग कई बार संशोधित करते हैं कि हम गेंदे की खेती करें, तो ऊपर से गेंदे के फूल मिल जाएंगे और उसको जड़ों के साथ ले लें तो निमेटोड जो होता है उसमें जो गेंदे की जड़ें होती हैं उसमें वो अट्रैक्ट करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं निमेटोड, तो हमें निमेटोड से भी निपटारा हो जाता है। और गेंदे की जो फसल है वो आपको 3 महीने में सारा लाभ दे जाती है। जैसे हमारे संस्थान से ऐसी प्रजातियां निकली हैं गेंदे की, जैसे दीपावली के टाइम पर जिसकी फ्लावरिंग आएगी, आप सोचिए कि अब तो मंदिरों में, मार्केट में, मैरिज में, हर जगह फूलों की खेती की जरूरत पड़ती है। तो एक तरफ तो आपका अमरूद के बाग में भी साथ में काम चलता रहेगा और इसके साथ साथ अगर आप फूलों की खेती करें, स्पेशली गेंदे की खेती करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ आप जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं आप उनकी भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आप एक बात का ध्यान रखें, अमरूद के बागों में कभी गहरी जुताई नहीं करते, क्योंकि अमरूद की जो पोषक तत्व वाली जड़ें होती हैं वो ऊपर की 25 सेंटीमीटर के नीचे तक ही होती हैं, और अगर हमने अपने ट्रैक्टर के माध्यम से इन जड़ों का नुकसान किया तो हमें बाद में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो हमको ऐसी फसल उगानी है जो कि ऊपर टॉप सॉइल में ही होती हो, हमको कोई जिसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हो ऐसी फसलों को बिल्कुल चयन नहीं करना है।
0: बिल्कुल, तो हमारे जो भी किसान बहन भाई अमरूद के बाग लगाएं तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। अब डॉक्टर साहब, बात आती है कि जिन किसान बहन भाइयों के हमारे अमरूद के बाग पहले से ही लगे हुए हैं, तो वो इस समय कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं या समसामयिक कार्य हैं वो करें, ताकि आने वाले समय में उनको फसल का अच्छा उत्पादन मिले और दाम भी अच्छा मिले?
1: देखिए इस समय ना बरसात की फसल खत्म हो चुकी है, इस समय आप देखेंगे कि अमरूद में कुछ सड़े गले फल नीचे पड़े होंगे, उनको सबसे पहले इकट्ठा कर लें, फिर कुछ शाखाएं सूख रही होंगी उन शाखाओं को भी निकाल दें, कुछ शाखाएं एक दूसरे से रगड़ खा रही होंगी उन शाखाओं को भी निकाल दें। उसके बाद में या तो हम बोडेक्स पेस्ट बना लें, या हम अगर बोडेक्स पेस्ट नहीं बना पा रहे, बोडेक्स पेस्ट बनाना भी बहुत सरल सा काम होता है, इसमें नीला थोता और चूने का प्रयोग होता है, जिसको आपको ये जहाँ पे ये सीमेंट वगैरह और लोहे वगैरह मिलता है वहां पे नीला थोता आसानी से मिल जाता है। तो अगर बोडेक्स पेस्ट नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप लेप बनाएं और जमीन से ऊपर 1 फुट तक तने में इसके लेप का वो करें, उसके बाद हम अगर तने के पास मिट्टी नहीं चढ़ी है तो मिट्टी चढ़ा लें, और आप देखेंगे अभी सर्दियों वाले फल सेट हो गए होंगे। तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, अगर उसके साथ में आप कुछ ट्राइकोडर्मा का भी पाउडर मिक्स करके डाल सकें तो एक तो जमीन के नीचे माइक्रोबियल पॉपुलेशन पूरी बढ़ जाएगी, और जब जमीन में माइक्रोब्स होते हैं जिसको हम कहते हैं अच्छे सूक्ष्म तत्व होते हैं, अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जमीन में तापमान आपका बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगा क्योंकि एक्टिविटी चलती रहेगी, तो आपकी जो सर्दियों वाली फसल है वो बहुत अच्छी मिलेगी। इन सब बातों का किसान भाई अभी जिनकी फसल लगी है वो ध्यान दें और सर्दियों की फसल का अच्छा सा उनका लाभ मिलेगा।
0: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कीट की, रोग की, तो उनका भी प्रबंधन करना जरूरी है, क्योंकि जो कीट हैं, कीड़े हैं, वो भी फसल को बर्बाद करते हैं।
1: आपने शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि अमरूद की पॉपुलैरिटी के पीछे कारण क्या है, उसके पीछे एक कारण है कि अमरूद में रोग एवं कीट व्याधियां कम आती हैं अपेक्षाकृत दूसरे फलों की फसलों से। फिर भी इसमें एक बहुत खतरनाक बीमारी आती है जिसको हम उकठा रोग कहते हैं। उकठा रोग में क्या सबसे बड़ा कारण होता है कि किसान भाई इन जनरल अभी भी अमरूद में गहरी जुताई कर रहे हैं, अमरूद में खुला पानी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ अमरूद में अगर हमने शुरुआत में जड़ों में डैमेज किया तो फिर उकठा की बीमारी बढ़ने लगती है। तो इसके 3 तरीके से हम प्रबंधन करते हैं। सबसे पहले हमें खुली सिंचाई नहीं करनी है, दूसरा हमें ध्यान देना है कि अगर आपके पास मान लीजिए

0: ये ड्रिप इरिगेशन नहीं है, या जिसको हम लोग बोलते हैं टपक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो आप इसमें थाला बनाइए और थाले के बगल में इसमें लाइन खींचिए, इसको नाली कहते हैं। आप थाले वाले विधि से इसकी सिंचाई कीजिए। और तीसरा, अमरूद के जो क्राउन पोर्शन, जो उसको तने का जमीन से जुड़ा हुआ जो जगह है, उस पर हम मिट्टी चढ़ा के रखेंगे, जिससे कि डायरेक्ट उस जगह पे पानी ना लगे, अदरवाइज उससे भी अमरूद सूखने की संभावना हो जाती है। दूसरा जो अमरूद में सबसे बड़ा, जिससे पूरा देश परेशान है, वो है फल मक्खी की समस्या। तो फल मक्खी की समस्या के दो निदान है, क्योंकि बरसात में फसल बहुत अच्छी आती है। बरसात की फसल जो होती है उसमें 95% अमरूद का फलन हो जाता है, 5 से 10% फलन हमें सर्दियों का मिलता है। तो हमें इसमें दो तकनीकी अपनानी। किसान भाई, इसमें आप सोचेंगे अगर आपने वो विधियां अपना ली तो आपको बहुत अच्छी इनकम मिलेगी। सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे फूल सेट हो जाते हैं, फल लग जाते हैं अमरूद में बरसात में, तो हमें सबसे पहले फलों को तोड़ना है, यानी हमें फ्रूट थिनिंग करनी है। हम देखेंगे अमरूद के तीन तीन जो फल हैं वो एक साथ लगे रहते हैं, साइड के हमें दो फल निकाल देने हैं और एक फल रखना है। और हमें कोशिश करनी है कि एक पेड़ में करीब हम 75 से 80 फल, उससे ज्यादा ना रखें, क्योंकि एक फल के लिए हमें 25 से 30 पत्तियां चाहिए होती हैं उसके पोषण को पूरा करने के लिए। जब हम बहुत ज्यादा फलन लेते हैं तो हमारी गुणवत्ता भी कम होती है और उसके साथ साथ हमारे फलों का साइज भी छोटा रह जाता है। आप देखेंगे आजकल अमरूद का बड़ा अच्छा साइज आ रहा है, देसी अमरूद का भी बहुत अच्छा साइज आ रहा है, क्योंकि किसान अब फ्रूट थिनिंग करना शुरू कर दें। दूसरा, अमरूद जब बेड़ के आकार का हो जाए तो उसमें आजकल एक पॉलीथिन बहुत अच्छी टाइप की आने लगी है, जो बैगिंग में आप उपयोग कर सकते हैं। इससे इसका कलर भी अच्छा होगा और इसके साथ साथ फल मक्खी अपने अंडे नहीं दे पाएगी। अगर आपने इन दो चीजों का ध्यान रख लिया तो किसानों की बहुत अच्छी आय मिलेगी और लागत कम से कम रहेगी। और तीसरा, जो मैंने अपनी बातों में आपसे बताया है कि जो नेचुरल फार्मिंग है, जिसको हम कहते हैं कि बगैर किसी केमिकल की कोई खेती हो सकती है, तो अमरूद की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे बाजार में जब भी अमरूद आता है तो लोग साफ सुथरा अमरूद जो फल है अमरूद का वही पसंद करते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं अमरूदों पर, उनसे कैसे बचाया जा सकता है फसल को?
0: उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कर सकें तो, जैसे मैंने बोडेक्स पेस्ट बताया, ऐसी बोडेक्स का पेस्ट अगर नहीं कर पा रहे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप 6 ग्राम प्रति 5 लीटर के हिसाब से आप उसमें घोल बनाएं और इसको छिड़काव करें, तो उस बैक्टीरिया का प्रबंधन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप प्रयाग से अमरूद आ रहा है, कहीं और से आ रहा है ना, पत्ते चिपके रहते हैं कई कई अमरूद में, जैसे हम चित्तीदार बोलते हैं, तो वो एक वैरायटल ट्रेट होता है। बट दूसरे के लिए आप अगर एंथ्रेक्नोज वगैरह की समस्या आ रही है तो उसके लिए आप बोडेक्स पेस्ट का स्प्रे बना के घोल करें या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल करें, उससे निदान आसानी से हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है और बहुत सारी सरकार की योजनाएं भी चल रही हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं, जहां उनको अच्छा लगता है फसल का भाव वहां बेच सकते हैं, तो ऐसे में अगर हमारे जो किसान भाई हैं अपनी फसल को एक शहर से या एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं बेचने के लिए, तो खास कर किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
0: देखिए, हमको जब भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है कहीं भी, तो हमको देखना है किस स्टेज पे हमें उसकी तुड़ाई करनी है। हम इसको बोलते हैं जब हरापन पूरा खत्म हो जाए, उसको कलर टर्निंग स्टेज कहते हैं। उस कलर टर्निंग स्टेज पे जब किसान भाई इसकी तुड़ाई करते हैं और उसके बाद में हमें सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करने के बाद में उसको अच्छे से हमें कॉरोगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स या ऐसा लगे कि कोई ट्रे है, प्लास्टिक ट्रे, और आजकल बड़ी स्मार्ट पैकिंग होती है, नीचे उन्हीं पत्तियों को नीचे डाल दिया जाता है तो वो पैडिंग का काम करते हैं, ऊपर अमरूद रख दिए जाते हैं। और अमरूद की जब तुड़ाई करते हैं तो आप देखते हैं दो लीफ साथ में जुड़ी रहती है। आप सोचो, उसको छू के आदमी बोलता है कस्टमर कि इस अमरूद को लेते हैं, जरा फ्रेश लग रहा है। तो इन थोड़ी छोटी चीजों का किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जिससे ट्रांसपोर्ट में उसको जर्क नहीं लगे, तो इसके ध्यान रखना है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो अभी जाड़ों में हमारे किसान भाई फसल लेंगे अमरूद की, तो उसके लिए खाद पानी के प्रबंधन पर भी हम बात कर लेते हैं, किस तरह से उनको करना चाहिए?
0: जब हम सारी साफ सफाई कर लें अपने बाग की, तो उसके बाद में हमें सड़ी गोबर की खाद, अगर उसमें हम ट्राइकोडर्मा मिक्स कर सके तो ट्राइकोडर्मा, और ट्राइकोडर्मा की अगर हमने कल्चरिंग गोबर की खाद में पहले से कर ली, उसके साथ साथ एक एजोटोवेक्टर नाइजर, जैसे अपन AN17 करके स्ट्रेन आता है, अगर वो हमने साथ में अपने गोबर की खाद में डाल लिया और उसका फिर प्रयोग हमने अमरूद के बागों में किया, तो अमरूद के पोषक तत्वों की जो मुख्य जरूरत है वो पूरी हो जाएगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने दी है हमारे किसान बहन भाइयों के लिए। जरूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जैसा आपने बताया उसी तरह से अपनी फसल का प्रबंधन करेंगे और उन्हीं कृषि क्रियाओं का वो उपयोग करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे सभी किसान भाई बहन सुन रहे थे ये खास बातचीत। और अमित, देखिए ना, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं या हमारी सरकारें हैं, समय समय पर किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो साझा करते हैं, चाहे वो सम्मेलन हो या संगोष्ठी हो या किसी भी मेला हाट के द्वारा हो। अभी देखिए, रबी अभियान 2026 को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 28 और 29 सितम्बर को नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी एवं कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
3: आज रवि की कॉन्फ्रेंस के लिए मित्रों हम यहाँ उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि कृषि, अनाज, फल, सब्जियां ये भारत जैसे विशाल देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो अभूतपूर्व है। कृषि विकास दर में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन काम करने की जरूरत और है। अब रबी की जब हम बात करते हैं तो खरीफ जिसमें बहुत चिंता थी मन में, क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है, एक तरफ महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, बड़े हिस्सों में सूखे का संकट है। तो अभी कल खबर आई कि यूपी में कई मौत इसलिए हो गई, भारी बारिश के कारण हो गई। क्लाइमेट चेंज के असर साफ नजर आ रहे हैं। अलनीनो के प्रभाव के कारण हम चिंतित थे, लेकिन मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा आप सबको, पूरी टीम को, लगभग खरीफ की बुआई का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। हाँ, फसलें जरूर प्रभावित है कई जगह। मैं आज इस बैठक में ही आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि खरीफ की फसल का कुछ जगह खराब होने के खतरे पैदा हुए हैं। कर्नाटक ने भी सूखा डिक्लेयर किया है, महाराष्ट्र ने भी, लगभग दो तिहाई राज्य में उन्होंने अपने यहाँ राज्य के स्तर पर सूखा घोषित किया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ राज्यों को, केंद्र सरकार आपके साथ डट के खड़ी है। जहाँ संकट है वहां मिलकर मुकाबला करना है और रबी की तैयारी भी करनी है। और रबी की तैयारी की जो कुछ प्रमुख चीजें हैं, कुछ जगह बारिश बहुत अच्छी हुई है, कुछ जगह एवरेज से कम है, लेकिन पानी बहुत इतना गिरता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोनी पर। उन राज्यों के मित्रों को भी मेरा कहना है कि आप रबी की प्लानिंग पूरे साइंटिफिक तरीके से कीजिए, और जिन हिस्सों में देश के कम पानी है वहाँ कितना पानी की उपलब्धता है, नमी कितनी है, सिंचाई के पानी के लिए अभी से प्रबंध करें। मुझे लगता है कि इस समय जल बजट बनाने की जरूरत है। जहाँ पानी सीमित है उस पानी का उपयोग कैसे करें, उस पानी को देखते हुए कौन सी फसलों की हम सलाह दें, प्लानिंग करें। और तैयारियों में मैं समझता हूँ कि देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम रबी की बुआई के मुहाने पर खड़े हैं एकदम। रेनफेड इलाके में तो जल्दी अब बोनी शुरू हो जाएगी, और जो रेनफेड नहीं है और सिंचाई की व्यवस्था है उसकी तैयारी हम अलग से रखें। दूसरे जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पानी के बाद, मिट्टी में हम नमी कैसे बचाएं और समय पर बुआई कैसे करें। फिर जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा, उत्पादन ठीक नहीं आएगा, और इसलिए समय पर सारी तैयारी कर लीजिए। और मैं ये मानता हूं कि तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज है बीज, और बीज की तैयारी उपयुक्त बीज, उपयुक्त किस्म, पानी को देखते हुए। भरपूर पानी है वहाँ आप देखिए कौन सी किस्म, जहाँ पानी की कमी है वहाँ कौन सी किस्म का बीज आपको चाहिए। कई बार मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि कुछ राज्य पर्याप्त मात्रा में ना तो बीज की डिमांड करते हैं ना बीज उठाते हैं, और कई जगह बीज का वितरण इतनी देरी से होता है कि जब तक वो बीज आते हैं तब तक बोनी हो जाती है, फिर वो बीज जो बहुत उपयोगी है। और इसके बाद आप अभी से ये तैयारी भी करिए, अब हमने दलहन में तय किया है कि तुअर, मसूर, उड़द पूरी खरीदेंगे, लेकिन कई जगह खरीद की तैयारी ढंग से होती नहीं, इसलिए तैयारी परफेक्ट और पूरी करें। बीज की उपलब्धता, उसका उठान, उनका वितरण, इसका पूरा रोड मैप बनना चाहिए समयबद्ध। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा राज्य में आप एक मजबूत टीम एग्रीकल्चर बनाइए। केबीके को जोड़ने की बात हुई है, एफपीओज को जोड़िए। एक जो बात अभी डाइवर्सिफिकेशन की कही थी, अब डाइवर्सिफिकेशन करना तो ये राइस फैलो पे काम अभी से करना पड़ेगा भाई, हर एक राज्य, विशेषकर पूर्वी भारत के राज्य। मेरा आग्रह है राइस फैलो में आप दलहन की बोनी की पूरी रणनीति बनाइए उपलब्ध नमी की आवश्यकता को देखते हुए। तो मुझे लगता कि हमारे सम्मेलन परिणाम मूलक हो पाएगा। और एक मुझे लगता है हर सप्ताह हमने एक सिस्टम यहाँ विकसित करने की कोशिश की है कि एक साप्ताहिक समीक्षा करते हैं हम, जिसमें फसलों की क्या स्थिति उसकी जानकारी लेते हैं, फसलों की स्थिति, मार्केट के रेट, बीमारी का अटैक, रियल टाइम में सारी चीज पता चलनी चाहिए। एक और अपनी ड्यूटी है कि उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल, लेकिन संतुलित उपयोग हो ये हमारी राज्य की भी ड्यूटी है भाई। सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। खेत बचाओ अभियान हमने खरीफ की फसल में चलाया था, रबी की फसल के लिए भी खेत बचाओ अभियान चलना चाहिए। माटी भी बचाना है, मित्र कीटों को भी बचाना है, इसलिए संतुलित इस्तेमाल कैसा हो इसकी कोशिश आप कीजिए। इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है। प्राकृतिक खेती के लिए भी एक मौका है, हम इस समय रबी में प्राकृतिक उत्पादों के लिए रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है, किसान भी आगे आए, लेकिन राज्यों को अपने प्राकृतिक उत्पाद की मार्केटिंग, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी।
4: मित्रों अब कार्यक्रम में समय है मौसम का और कोशिश रहती है कि मौसम को ध्यान में रखकर ही अपने कृषि कार्य करें। दिल्ली

0: फसलों जैसे कि दलहनी फसलों, मक्का आदि में सब्जी नर्सरियों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें।
1: बिल्कुल प्रतिमा, और वहीं जो धान की कृषि हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं, अगेती और मध्यम अवधि की धान की फसल इस महीने पककर तैयार हो जाती है। दानों में नमी 17 से 18% होने पर ही कटाई करें, और कटाई के बाद विशेषतः ध्यान रखें फसल अवशेषों का, क्योंकि भाई ये जलाने नहीं है, अपितु जलाने के बजाय पूसा डीकम्पोजर का उपयोग करें ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे।
0: तो ये थी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि सलाह। तो अब इंतजार है हमारे सभी किसान भाई बहनों का कि आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव क्या रहे। तो अमित, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कुछ सब्जियों के भाव। अगर हम आलू की बात करें तो इसका मूल्य रहा लगभग 12 से 18 रुपए प्रति केजी। प्याज की अगर बात करें तो ये 35 से 40 रुपए प्रति किलो रहा। टमाटर 35 से 40 रुपए केजी। बैंगन की बात करें तो ये 20 से 25 रुपए प्रति केजी किसानों को मिल रहा है।
1: बिल्कुल प्रतिमा, बात कर लेते हैं कुछ फलों के भाव की। यदि सेब की बात करें तो सेब का भाव रहा है 150 रुपया प्रति किलोग्राम से 175 रुपए प्रति किलोग्राम। अमरूद 100 रुपए से 120 रुपया प्रति किलोग्राम। और वहीं पपीता की बात करें तो पपीता का भाव रहा 40 से 50 रुपया प्रति किलोग्राम।
0: और अमित, इस तरीके से जब मंडी के भाव हमारे किसान भाइयों को पता चल जाते हैं तो वो अपना सामान बेचने और खरीदने में उन्हें बड़ी आसानी होती है। और अमित, देखिए हमारे सभी किसान भाई बहनों को इंतजार रहता है कि हमारा जो किसान वाणी कार्यक्रम है उन तक पहुंचे, और हमें भी इंतजार रहता है उनकी फीडबैक का। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है feedback@gmail.com। अब वक्त है किसान भाइयों से विदा लेने का, और साथ ही हम तो यही कहेंगे कि हमारे किसान भाई बहनों को उनके मन मुताबिक उत्पादन मिले, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण मिले। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इन्हीं शब्दों के साथ अपने किसान भाई बहनों से अनुमति लेते हैं। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल कबाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: इसी के साथ गजल कव्वाली का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 7:45 होने को है, कुछ ही पलों में अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने बारापुला के तीसरे चरण और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दिल्ली में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित। और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली वासियों को 1941 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। श्री शाह ने बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। साथ ही मोदी मिल, सावित्री सिनेमा, फ्लाईओवर और लोनी अंडरपास के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग से राजधानी में आधुनिक, मजबूत और नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे को

0: गति मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 शुरू होने से मयूर विहार फेज 1 से सराय कालेखा होते हुए दक्षिण दिल्ली और एम्स तक सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि करीब 11 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर को मौजूदा बारापुला नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और नोएडा से आने जाने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा। उन्होंने परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी।
2: मैं बधाई देती हूँ अपने सारे अधिकारियों को जिन्होंने न जाने कितनी बार यहाँ का दौरा किया, एक एक परमिशन के लिए विभागों को संपर्क लिया और संपर्क करने के बाद उन कामों को पूरा करवाया और आज साक्षात रूप में इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं।
1: वहीं श्रीमती गुप्ता ने बताया कि मुकरबा चौक अंडरपास का निर्माण बाहरी रिंग रोड पर यातायात को अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया है। परियोजना में 2 वाहन अंडरपास और 1 पैदल यात्री अंडरपास शामिल हैं। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि बारापुला फेज 3 और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन तथा लोनी अंडरपास और सावित्री सिनेमा मोदी मिल फ्लाईओवर का शिलान्यास दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिवांग मिश्रा के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था मजबूत करना और प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक तथा त्वरित पहचान करना शामिल है। पहले निर्णय के अंतर्गत छोटी सड़कों पर भी मशीनीकृत सफाई व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए दिल्ली नगर निगम को 30 इलेक्ट्रिक वाहन आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा। दूसरे निर्णय के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से PM 2.5 और PM 10 के प्रदूषण स्रोतों की लगातार त्वरित पहचान और विश्लेषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ईवी आधारित 30 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की व्यवस्था पर 10 वर्षों में लगभग 300 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत 10 मीटर से कम राइट ऑफ वे वाली लगभग 609 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल की गई हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार सड़कों की धूल, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों से निकलने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, परिवर्तन और जन भागीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। शिवांग के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली मेट्रो ने आज हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग परियोजना स्थलों पर निर्माण श्रमिकों के लिए सूचना, शिक्षा और संचार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इस पहल का उद्देश्य निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों को उनकी दैनिक गतिविधियों से शहर की वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक करना था। सत्र के दौरान धूल नियंत्रण के व्यावहारिक उपायों पर विशेष बल दिया गया। श्रमिकों को ये भी सलाह दी गई कि वे खाली अवस्था में चल रही मशीनों को बंद रखें, पर्यावरण मानकों के अनुरूप उपकरणों का इस्तेमाल करें और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत रेलगाड़ी में यात्रा करने वालों के लिए ट्रिप पास की सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से नियमित यात्री पहले से ही अपनी यात्राओं की योजना बना सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। NCRTC ने बताया कि इस सुविधा से बार बार टिकट खरीदने या कार्ड चार्ज करने की जरूरत कम होगी और रोजाना के सफर में काफी समय की बचत होगी। दिल्ली नगर निगम द्वारा सुनियो 2.0 यानी 1+7 संपत्ति कर निपटान योजना 2026-27 की आज शुरुआत की गई। महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत करदाता वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और इससे पूर्व के 7 वित्तीय वर्षों तक की संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे राइजिंग लीडर्स प्रोग्राम के प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान प्रतिभागियों को MCD की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और प्रमुख नागरिक दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News Hindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।

0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत आज दिल्ली के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर सीलमपुर के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज और पूर्वोत्तर दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज में आयोजित किए गए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सत्यवती कॉलेज, मैत्री कॉलेज, केशव महाविद्यालय और छोटूराम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी विशेष शिविर आयोजित किए। दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत आज दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजधानी के नागरिकों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। श्रीमती पंत ने बताया कि दिल्ली की सड़कों की बेहतर सफाई, धूल नियंत्रण तथा स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा 70 नए मैकेनिकल रोड स्वीपर खरीदे जाएंगे। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 6वीं कोर्ट बैठक की अध्यक्षता की। श्री संधू ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रगति की सराहना करते हुए शोध कार्यों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शोध केवल शोध पत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि उसके निष्कर्षों को दिल्ली की वास्तविक चुनौतियों के समाधान के लिए व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में आज दक्षिणी जिला पुलिस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस ने राजधानी के सुनसान पार्कों में गश्त बढ़ाने और डार्क स्पॉट पर विशेष निगरानी रखने जैसे कदमों की जानकारी दी। इस दौरान अनेक विधायकों ने पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने पर विशेष बल दिया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ लेखाकार और लेखाकार के पद पर कार्यरत इन दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर एक संस्था से संपर्क किया और उसके लंबित FCRA पंजीकरण में सहयोग करने के बदले रिश्वत मांगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चलता है कि वे रिश्वत के बदले कुछ संस्थाओं के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए उनसे संपर्क में थे। गृह मंत्रालय ने बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए इस मामले में उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। FCRA से संबंधित सभी सेवाएं FCRA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाती है और किसी भी FCRA सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के विशेष योगदान की पहचान करना और सम्मानित करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहल शुरू की है। एक रिपोर्ट।
3: श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसमें बड़े शहरों, सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों, प्रमुख पर्यटन स्थलों और आर्थिक केंद्रों को शामिल करना सुनिश्चित किया है। इस पहल का उद्देश्य तय समय सीमा के भीतर निगरानी और समीक्षा के व्यवस्थित ढांचे के जरिए शहरी स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन, साफ सफाई और नागरिकों की भागीदारी में सुधार करना है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से दुर्गापुर में स्वच्छ भारत टेस्ट बेड एंड इनोवेशन सेंटर भी शुरू किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के संकल्प भवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर का भी उद्घाटन किया। ये पहल सरकारी कार्यस्थलों में टिकाऊ खपत, दोबारा इस्तेमाल संसाधनों की रिकवरी और सर्कुलरिटी को भी बढ़ावा देगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और

0: लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। इतने की तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना से देश भर में हवाई यात्रा अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इससे विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों, पर्यटन प्राधिकरणों और संबंधित पक्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए हवाई मार्गों के लिए नेटवर्क रणनीतियां तैयार करने और भविष्य के नए मार्ग के विकास पर चर्चा के लिए मंच मिलेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्रीमती गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पुस्तिका सौंपी। इसमें पिछले 1.5 वर्ष में दिल्ली में किए गए प्रमुख विकास कार्यों और जन कल्याणकारी पहलों का विवरण है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक अपने नाम किए हैं। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आसमान साफ रहेगा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुला के 3रे चरण और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दिल्ली में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोता हूँ, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, फिल्म का नाम है जीत और गायक कलाकार हैं विनोद राठौड़ और अलका याग्निक।

0: sucede.
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: और श्रोताओ आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू को। फिल्म का नाम है दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और मैं हूं आपके साथ चेतन शर्मा। और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म टू स्टेट्स से एक गीत, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्री प्रधाने, और गीत रचना है अमित भट्टाचार्य की, और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर श्रोता सुन रहे हैं गीत मालिका फिल्म संगीत चेतन के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सोलवा साल। गायक कलाकार हैं हेमंत कुमार।

गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, द ट्रेन फिल्म से ये गीत अभी आप मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मोहब्बत है फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण, जसपिंदर, उद्धव।

0: श्रोता उसी के साथ मोहब्बत फिल्म के इसी गीत के साथ आवाज का ये गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त करने की चेतन को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
3: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
5: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
6: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
5: एंड नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय

0: आया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
1: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
0: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
2: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
3: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं।
4: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें DBT के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपये मिलता है।
2: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। DBT ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@airnewshindi को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक

0: बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Defense Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defense preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Keralam and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400 meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent.
3: The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner, and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. The defense minister noted that the presence of Indian warships in South China Sea, Mediterranean, Atlantic Ocean demonstrates the country's blue water force capability. He also commended the Indian Navy for maintaining a high level of combat readiness, noting that it is acting as a strategic anchor in realizing India's resolve of becoming a developed nation by 2047. With Priya Mondal, Netika Gupta, Akashwani News, Delhi.
2: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multi-dimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and Masoor at minimum support price.
4: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Tur, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
2: The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. This is Akashwani giving you the news.
5: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News On Air Official on YouTube.
2: Welcome back to Akashwani News. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today launched a new set of initiatives under Pragati 50 to develop a model city framework for 50 cities of economic, cultural, heritage, pilgrimage, tourism and administrative significance. Speaking at the launch ceremony, the Union Minister emphasized that these 50 cities across 24 states will emerge as clean role model cities for the rest of the country. He said that the government has ensured the inclusion of major cities, cities of cultural importance, high tourism destinations and economic centers. The initiative aims to drive visible improvements in urban cleanliness, solid waste management, used water management, sanitation and citizens' participation through a structured framework of monitoring and review within a defined time frame. The Election Commission today issued notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and one seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, B.L. Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and six others are completing their terms on 25th of November. The commission has also issued notification for by-poll in one seat of Rajya Sabha in West Bengal. The seat was vacant due to the resignation of TMC MP Rukmini Malik. Nomination has started from today and polling will be held on the 16th of October. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met her Qatari counterpart Ali bin Ahmed Al Kuwari on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Both leaders discussed expanding India's UPI payment system across Qatar and strengthening financial cooperation between the two countries. The talks also focused on the implementation of Qatar's $10 billion investment commitment in India, greater engagement with the National Investment and Infrastructure Fund, and finalization of the bilateral investment treaty. They also discussed the double taxation avoidance agreement to provide greater certainty for trade, investment, and taxation. The second meeting of the Joint Parliamentary Committee examining the Foreign Contribution Regulation Amendment

0: तैयारियों का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। नई दिल्ली में भारतीय बहरिया के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क का हदफ वाजे है कि बहरान पैदा होने से पहले तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए ताकि किसी भी बहरान से निपटा जा सके। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि जारी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने एक बार फिर भारतीय बहरिया की पेशा वराना और अमली तैयारी को साबित कर दिया है, जो मुल्क की तवानाई की सप्लाई लाइनों और कौमी मफादात के तहफ्फुज के लिए जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत बहरे हिंद के खित्ते में एक काबिल एतमाद और तरजीही सिक्योरिटी शराकत दार के तौर पर मजबूती से खड़ा है और एतमाद और भरोसे की इलामत बना हुआ है, जिससे मुल्क के महासागर के विजन को तकवीयत फराहम हो रही है। वजीर दिफा ने कहा कि जनूबी बहरे चीन, बहरे रोम, बहरे ओकियानूस में भारतीय जंगी जहाजों की मौजूदगी मुल्क की बहरी ताकत की सलाहियत का इजहार करती है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत एक कसीर रुखे हिकमत अमली पर काम कर रही है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और माकूल कीमतें मिल सकें। इस हिकमत अमली में कटाई के बाद के बंदोबस्त, पैदावार को साइंसी तौर पर गोदाम में रखना और मार्केटिंग निज़ाम शामिल है। आज नई दिल्ली में रबी मुहिम 2026 पर कौमी ज़रई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन खिताब करते हुए जनाब चौहान ने तूर, उरद और मसूर की कम से कम इमदादी कीमत पर 100% सरकारी खरीद और 48 घंटे के अंदर अंदर अदायगी के इंतजाम की यकीन दहानी कराई।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत बैन अलावामी आज़ाद तजारती माहदों के तवसत से उभरने वाले बाजार के नए इम्कान को भी बरूएकार लाएगा ताकि मुल्क की जरिए पैदावार फलों, सब्जियों और अनाज को आलमी बाजारों तक रसाई फराहम हो सके। जनाब चौहान ने कहा कि इससे किसानों को उनकी पैदावार की बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और भारत दुनिया के लिए खुराक के मामले में एक अहम मुल्क बन जाएगा। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के तहत नए इकदामात के सिलसिले का आगाज किया, जिनका मकसद 50 शहरों के लिए इक्तसादी, सकाफती, विरासती, मजहबी, सयाहती और इंतजामी अहमियत के हामिल मिसाली शहर से मुतालिक तरीक़ेकार तैयार करना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने जोर देकर कहा कि 24 रियासतों में ये 50 शहर मुल्क के बकिया हिस्से के लिए एक साफ सुथरे मिसाली शहरों के तौर पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अहम शहरों, सकाफती अहमियत के हामिल शहरों, ज्यादा सयाहों वाले मकामात और इक्तसादी मराकज को इनमें शामिल करने को यकीनी बनाया है। इन इकदामात का मकसद एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान निगरानी और जायजे के एक मुनज्जम तरीक़ेकार के तहत शहरों की सफाई सुथराई, ठोस कचरे के बंदोबस्त, इस्तेमाल शुदा पानी के बंदोबस्त और शहरियों की शमूलियत के जरिए नुमाया बेहतरी लाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि फवायद की बराह रास्त मुंतकली के जरिए इस नज़रिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
2: 2014 में शुरू की गई फायदों की बराह रास्त मुंतकली की स्कीम के तहत फलाही स्कीमों की फराहमी के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली आई है। इसके जरिए हुकूमत की जानिब से फवायद की रकम बराह रास्त अहल मुस्तफिदीन के खातों में मुंतकिल की जाती है। इस निज़ाम ने बिचौलियों के रोड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और रुकूम में किसी भी तरह की खुर्द बुर्द को रोक कर शफाफियत पैदा की है। इस साल अगस्त तक फवायद की बराह रास्त मुंतकली के जरिए 320 स्कीमों के तहत 53 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम अहल मुस्तफिदीन के खातों में मुंतकिल की गई है। एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि फवायद की बराह रास्त मुंतकली सैकड़ों सरकारी स्कीमों के तहत की जा रही है और इस निज़ाम ने रकम की मुंतकली में किसी भी तरह की गड़बड़ के इम्कान को खत्म कर दिया है।
3: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नक्सलवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कल एक नई कृषि पहल की शुरुआत हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लद्दाख में उगाए गए लीलियम फूलों की पहली व्यावसायिक एयर कार्गो खेप को रवाना किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह लद्दाख के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ठंडे रेगिस्तान के रूप में पहचाने जाने वाले लद्दाख में अब भी फूलों की खेती सफल हो रही है। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की पहल पर फूलों की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्याग्दी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और ओडिशा में भी ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले

0: 9 seconds at Nagoya in Japan. India also bagged a bronze in men's 4x400m relay and another bronze in mixed 4x100m relay. Earlier, Nirudhana made history by becoming the first Indian shooter to win gold in the women's trap individual event in Japan. India has moved up to the 10th place in the 2026 Asian Games standing, bringing its total medal tally to 53. And that is the end of this news bulletin.
1: और दोस्तों ये वक्त है उस प्रोग्राम का जिसमें हम सुनते हैं पुराने दौर के वो गीत जो बहुत पुराने तो हो चुके हैं लेकिन धूल वक्त की धूल उन पर नहीं चढ़ पाई है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और इसी चैनल पर आप इस कार्यक्रम के ज़रिए उस पुराने दौर में जा सकते हैं हमारे साथ जिस दौर में बहुत सुकून था, बहुत चैन था और लोग बहुत एक दूसरे के करीब थे। तो पहला नगमा जो आप तक आ रहा है वो है उमा देवी की आवाज़ में और फिल्म का नाम है धरती माता।

और दोस्तों उस दौर के गीतों में जब हम जाते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति मिलती है, क्योंकि जब आप इन गीतों को सुनते हैं तो आप ख़ुद महसूस कर सकते हैं कि कितना सुकून रहा होगा उस दौर में, कितनी शांति रही होगी, आपस में दिलों में कितना प्रेम रहा होगा, है ना। तो चलिए प्रस्तुत है अगली प्रस्तुति फिल्म सितारा से।

कुंदन लाल सहगल, जिन्हें हम केएल सहगल जी के नाम से भी जानते हैं, भारतीय सिनेमा और संगीत जगत के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। 1930 और 1940 के दशक में उनकी आवाज़ और अभिनय का ऐसा जादू था कि लोग उन्हें भारतीय सिनेमा का तानसेन भी कहते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर जी और मुकेश जी जैसे महान गायक भी उन्हें अपना आदर्श और गुरु मानते थे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अगली पेशकश उन्हीं की आवाज़ में, केएल सहगल जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दुश्मन।

सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी 1937 को उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। हिंदी सिनेमा की एक महान और सुरीली पार्श्व गायिका थी। उन्हें हिंदी संगीत के सुनहरे दौर 1950 और 1960 के दशक की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से गिना जाता है। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में गाने गाए हैं। तो आइए इसी मीठी सी आवाज़ को हम सुनवाते हैं आपको लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल पर, जो आकाशवाणी दिल्ली का है।

और दोस्तों अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय ऐतिहासिक गीत माना जाता है कि सदाबहार गाने में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि लोग आज भी इस गाने को सुनकर प्रभावित होते हैं। ये गाना 1951 में आई मशहूर क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजी का है। इस फिल्म को महान निर्देशक गुरुदत्त जी ने निर्देशित किया था। इस गाने को फिल्माया गया था अभिनेत्री गीता बाली जी पर, जिसमें उनके साथ देवानंद जी भी नज़र आए थे। और इस गाने को संगीत के जादूगर SD बर्मन यानी सचिन देव बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया था। और इसके प्रेरक बोल लिखे थे मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने।

और दोस्तों, अगली प्रस्तुति है सुरैया जी की आवाज़ में, जिनके सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गाने, उनकी बेहतरीन अभिनय और उनका उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। तो चलिए सुनते हैं गीता जी दत्त जी की आवाज़। तो आपने अभी सुनी, लेकिन अब हम सुनेंगे सुरैया जी की वो मधुर आवाज़ जो अपने दौर में बहुत बहुत बड़ी पहचान रखती थी।

और दोस्तों अब तो सबके हाथों में मोबाइल है, इस वजह से ये वक्त हमें नहीं मिलता, लेकिन एक दौर था जब हम अपने बड़ों से कहानियाँ सुनते थे और ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि तब नानी दादी और अपनी माँ से बच्चे ज़िद किया करते रहते कि माँ एक कहानी सुनाओ ना, नानी एक कहानी सुनाओ ना, दादी एक कहानी सुनाओ ना। तो वो दौर तो शायद नहीं आ सकता, लेकिन पुराने दौरों के गीत में हम उस भावना को, उस एहसास को महसूस ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसा ही एक प्यारा सा गाना अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। फिल्म है सीमा, फिल्म का नाम है सीमा और इसे आवाज़ दी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। और इस बोल के प्रसिद्ध गीतकार, इसके बोल के प्रसिद्ध गीतकार हसरत जयपुरी जी ने। और

जरूर प्यारी सी कहानी का आनंद उठाया होगा। और दोस्तों अगला अगली प्रस्तुति जो आपके लिए आ रही है वो 1955 की फिल्म बाप रे बाप का ये गाना है, जिसे आवाज़ दी थी आशा भोसले जी ने और जिसे संगीतकार थे जिसके ओपी नैयर साहब और गीतकार जान निसार अख्तर साहब।

और दोस्तों, अब जिस फिल्म का गाना हम आपको तक पहुंचाने वाले हैं वो फिल्म है झनक झनक पायल बाजे। और इस फिल्म का जो प्रसिद्ध गीत है नैन सो नैन ना ही मिलाओ, संगीत जगत का एक अमर और शास्त्रीय भावनाओं से ओतप्रोत गीत है। और इस गाने को आवाज़ दी थी हेमंत कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने, और संगीतकार थे वसंत देसाई जी और गीतकार थे हसरत जयपुरी जी। तो आइए रात के 1:44 पर हम आनंद लें इस मधुर से संगीत का।

और दोस्तों अब जो संगीत आपके पास आने वाला है, क्योंकि अभी जो आपने गाना सुना वो बहुत ही मधुर संगीत था, और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में और हेमंत कुमार साहब जी की आवाज़ में, और अब जो गाना आपके पास आने वाला है वो भी बहुत ही प्यारा है और उस दौर का बहुत ही डांसिंग नंबर भी माना जा सकता है इसको, और पढ़ते पर ये

राज कपूर साहब और एक्ट्रेस नादिरा पर फिल्माया गया है, जबकि गाने के दृश्य में नरगिस जी भी दिखाई देती हैं। इस गाने के और गहरे और प्रेरणादायक बोल मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब ने लिखे हैं, और बॉलीवुड की दिग्गज जोड़ी शंकर जयकिशन जी ने इसका संगीत तैयार किया था। तो चलिए हम भी सुनते हैं। रात के 1:50 हो चुके हैं और आप इस रात में सुन रहे हैं कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे।

0: देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर है हे
1: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के

दोस्तों, हमें मनुष्य जीवन मिला है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं जिनका हमें डटकर मुकाबला करना होता है। और फिल्म संगीत, अगर हम पुराने दौर के संगीत में जाएं तो कुछ गाने ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक ताज़ा हवा की तरह आते हैं और हमें जीने का नया जोश दिला कर जाते हैं। और कुछ गाने नहीं, पुराने गानों के दौर पे जब आप जाते हैं, पुराने गानों को सुनते हैं, तो उनमें आपको कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई उपदेश, कोई ना कोई ऐसी बात जो आपको ज़िंदगी जीने का हौसला देती है, आप ज़रूर सीख जाते हैं। ऐसा ये गाना हमारी आखिरी पेशकश है आज के इस गीत सुनहरे प्रोग्राम की, जिसमें जो फिल्म है मुनीम जी, और इसमें आवाज़ दी थी किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने, और इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरत बोल इसके लिखे हैं साहिल लुधियानवी जी ने।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, तो समाचार पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: उदाहरणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: एंड नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का मकसद सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंचने में मदद करना है। देश भर से शहरी, स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने जायरोप्लेन के लिए पायलट लाइसेंस जारी करने से संबंधित नया सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सीएआर जारी किया है। जायरोप्लेन के पायलट लाइसेंस के लिए ग्राउंड और फ्लाइंग ट्रेनिंग सिलेबस नामक इस सीएआर में डीजीसीए से जायरोप्लेन श्रेणी का पायलट लाइसेंस हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जमीनी और उड़ान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरला, माहे, कराईकल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

न्यूज 24x7 चैनल है और रात्रि के 2:10 और 10 सेकंड हो रहे हैं और इस वक्त प्रोग्राम का जो समय है उसका नाम है गीत पहाड़, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ ऐसे नगमात, कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आपकी रात, आपका सुकून और ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम गीत पहाड़ का पहला नगमा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, और अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में बहुसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत

0: का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवॉरंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: एंड नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। भारत और उभरती आर्थिक व्यवस्था मंच के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दास ने बताया कि 2021-22 से 2025-26 के दौरान भारत ने औसतन 7.9% की वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। श्री दास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संबंध में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्यभर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन चल रहा है। 2 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Akhila. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said, "The country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep." The minister underlined that the ongoing Operation Urja

जनाब अब्दुल हमीद अदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें अदम साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताजा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले कतार से

अभी आपने सुनी बेगम अख्तर की आवाज़ में ये खूबसूरत सी नज़्म। लीजिए सुनते हैं मिताली की आवाज़ में अगली पेशकश।

इसी पेशकश के साथ फिलहाल गीत और गजलों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4:20 होने को है। इसे सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री टी के जयराम अय्यर का वायलिन वादन। संगीत दिया है त्यागराजा ने। मृदंगम पर है रामानंद ईश्वरम। राग श्रीरंजनी है जो कि ताल आदि में निबद्ध है।

अभी आपने सुना टी के जयराम अय्यर का वायलिन वादन। इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादवरम अब यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप आओ योग करें।

0: आज आप सुनेंगे पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट पर देशभक्ति गीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, इसका वक्त रहेगा प्रातः 5:30। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, यह आप सुन सकते हैं आज 6:10 पर। 6:40 का वक्त रहेगा कार्यक्रम चिंतन का। चिंतन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बचत पर गांधी जी के विचार। श्री रामचरितमानस से पाठ का वक्त रहेगा 6:45 पर। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 64। प्रातः 7:10 का वक्त है कार्यक्रम संगीतिका का। 7:30 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। आठ का समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का। प्रातः 9:15 पर होगा कार्यक्रम साइंस मैगजीन मिट्टी दी महक, इसका आनंद ले सकते हैं आप 9:30 पर। दस बजकर 10 मिनट का समय है आपकी पसंद, इस कार्यक्रम का। 11:10 पर आप सुनेंगे सबरस। 11:30 का वक्त है कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से

0: शामिल होंगे। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरे इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। भारत के स्पिन गेंदबाज श्री चरणी ने आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। श्री चरणी ने 817 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। वो पहले से ही T20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा है। श्री चरणी ने महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में भारत के अच्छे प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में आगे बढ़ी हैं। एशियाई खेलों के फाइनल में T20 विकेट लेने के बाद उनकी रेटिंग 754 अंक हो गई है। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 723 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष 5 में शामिल हो गई हैं। उन्होंने एशियाई खेलों के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रन बनाए थे। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said, the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated that the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. India has reaffirmed its commitment to the goal of a nuclear weapons-free world and the complete elimination of nuclear weapons. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, delivered India's statement at the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons at the UN headquarters in New York. Secretary George affirmed India's unwavering commitment to combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance at the high-level meeting on the 25th anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action, DDPA, at the ongoing UNGA. Last week, Secretary George highlighted the need for stronger international cooperation to return cultural properties during a high-level side event at the UNGA. Election Commission EC has organized special camps at different colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. The camps will continue till today. EC said that a large number of students visited the camps for queries related to

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले

आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्षस्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतु बंधन।